जी हाँ, दुख की रात कितनी भी लंबी हो, अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला किसी के रोके नहीं रुकता और उस अंधेरे को एक पल में मिटा देता है। कल क्या हुआ था उसे रात के अंधेरे के साथ ही छोड़ दीजिए। आज एक नई शुरुआत का दिन है, क्योंकि जिंदगी जो है ना, जिंदगी सिर्फ महज एक जिंदगी का सफर नहीं है, ये सुहाना सफर है और इसे बनाना आपके हाथों में है।

भोर सुहाने में आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। आइए अपने मन को शांत करें और आज के दिन की शुरुआत आज के पन्ने पर बहुत ही खूबसूरत विचारों को उकेरते हुए आगे बढ़ें। खुद को दिए 5 मिनट का समय भी आपको पूरे दिन को ऊर्जावान और तनाव मुक्त बना देता है। जी हाँ, जिंदगी के सफर में चाहे आप अकेले हो या आपके साथ आपके साथी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने विचारों के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है।

भोर सुहानी का सफर यहीं तक, रूपा को विदा दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अगले मोड़ पर, अगले मुकाम पर। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई 2026। सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आएंगी सुरति। छह बजकर 44 मिनट पर श्री रामचरितमानस गान से आप सुनेंगे बालकांड का भाग 70।

6:55 पर समाचार होंगे, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी और अंग्रेजी में। सात बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम होगा गोल्ड सुप्रभात। 8:45 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिकल दिल्लगी, जिसमें आपके साथ फिर से होंगी सुरती। 6:00 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold bilateral meeting with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the US will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared US's perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing company Jeff Shockey in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, scaling supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The government has published draft rules under the VVG Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendra in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Mateen Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tawseef Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. US President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Mr. Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said that he has spoken with leaders from Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baqai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week, but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. In IPL cricket, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And that is the end of this news bulletin.

1 MHz पर। और अब वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यार इसी सुबह की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यार इसे भजन के साथ, भक्तिमय बनाते हुए आज की सुबह में यूं कुछ इस अंदाज से प्यारे से भजन को सुनते हुए डूब जाते हैं।

किसी सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता गन्ने के समान होती है, जिसे कितना भी पीसो हर बार उसमें से मिठास ही निकलती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सुरति के साथ, और ये है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। आइए सुन।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4:00 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है आप श्री रामचरितमानस गान का, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का अगला भाग एफएम गोल्ड पर।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस और इसी के साथ वक्त हो गया समाचारों का। सुनेंगे संस्कृत में समाचार और ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा गोल्ड सुप्रभात सुरति के साथ। लेकिन अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवाद

0: नाम शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्तदिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुम्बई इण्डियन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित

0: काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts in West Asia through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. The government has published draft rules under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister JP Nadda yesterday. The existing beneficiaries under

चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है। आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही मेरा सलाम है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सुरति के साथ, और वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरे यानी सूरत के साथ सुन रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। भाई भारत की संस्कृति, समाचार और मनोरंजन की पहचान आप सभी की आकाशवाणी ने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं और इसी उपलक्ष्य में सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना अपनी आकाशवाणी के लिए।

0: और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। चिलचिलाती धूप, शुष्क हवाएं और भीषण गर्मी। ऐसे में अगर बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान जो है 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और सलाह की अगर बात करें तो भाई दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और खुद को धूप से बचा कर रखने की कोशिश कीजिए, वरना अगर ऐसे में आप बाहर चले गए तो परेशानी तो होगी, बच के रहिएगा धूप से और इस भीषण गर्मी से भी।
1: तुमने किसी की जान को

जान तो हमारी भाइयों में भी बसती है। आज ब्रदर्स डे है। 24 मई को मनाया जाने वाला भाई दिवस हमारे जीवन में मौजूद भाइयों को सम्मान देने का एक खास दिन है। तो भाई, भाई के साथ रिश्ता चाहे जैसा भी हो, इस दिन पर अपने भाई को सम्मान दें और उनके साथ इस दिन को सेलिब्रेट करें।

0: क्या बात है। और इसी के साथ सेलिब्रेट कीजिए ये खास दिन ब्रदर्स डे अपने भाइयों के साथ। और गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार सायरा।
1: नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी स्पेशल संडे एडिशन ऑफ आज सवेरे। एंड ऑफ कोर्स एवरी मॉर्निंग व्हेन वी मीट यू, यू आर प्रोबब्ली रशिंग फॉर वर्क एंड देन द रेडियो इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, बट आज संडे है तो प्रोबब्ली आप आराम से अपनी बालकनी में बैठ के चाय की चुस्कियां लीजिए और आज सवेरे सुनिए विद मी एंड फरहत। एंड हसब दस्तूर हम लाए हैं ताजा तरीन खबरें आपके लिए, सो व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। फरहत
0: जी बिल्कुल सारा।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral meeting with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the US will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States.
0: और सारा, वहीं सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम भी प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
1: In Maharashtra, a 1500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the

0: Cabinet also decided to complete incomplete houses from the first phase. About 1 lakh house inaugurations will take place on 2nd of June. On 1st June, Chief Minister Revanta Reddy and other officials will inaugurate 28 houses for tribal communities in Asifabad district. So, well, this was the bus that I had from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest feature that you have from the three cities of Delhi, Mumbai and Kolkata?
1: जी सारा, दिल्ली में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में व्यापक धूल मुक्त सड़क अभियान और विशेष स्वच्छता अभियान तेज कर दिए हैं। इन अभियानों के तहत शहरी स्वच्छता में सुधार और धूल प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर जेटिंग मशीनों और स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। इसके तहत करोलबाग जोन में एमसीडी ने इस महीने की 15 तारीख से 15 दिवसीय डस्ट फ्री रोड्स अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड, रानी झांसी रोड, डीबी गुप्ता रोड और नजफगढ़ रोड सहित प्रमुख बीडब्ल्यूडी सड़कों को कवर किया गया। वहीं दक्षिण जोन की बात की जाए तो ढोलाकुआं से एम्स, नेल्सन मंडेला मार्ग, अरविंदो मार्ग, राव तुलाराम मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू मार्ग पर इसी प्रकार का अभियान चलाया गया। वहीं राजधानी में सड़कों पर आज भारतीय संस्कृति, लोक परंपरा और उत्सव का अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा, जो राजधानी के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसी कड़ी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1 लाख से अधिक वनवासी समाज के लोग पहली बार अपनी विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्राओं में भाग लेंगे और ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंचेंगे। इस शोभा यात्रा को चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इसका प्रारंभ स्थल अजमेरी गेट चौक है। ये यात्रा अजमेरी गेट चौक, बाजार अजमेरी गेट, नई सड़क, चांदी चौक, बादशाह बुला, लाल किला से रवाना होगी। इस यात्रा में वनवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेंगे। और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के थाने जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान कल 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया था। क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के बारे में मिली गुप्त सूचनाओं के बाद थाने और नवी मुंबई पुलिस ने संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया। कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की भी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने बीड के पूर्व कलेक्टर अविनाश पाठक के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया है, जिन्हें 241 करोड़ रुपए के कथित भूमि अधिग्रहण मुआवजे घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 2013 के बैच के आईएएस अधिकारी पाठक को 7 मई को लातूर में बीड पुलिस की विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था और ये फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। और श्रोताओं, अब महानगरों के मौसम का हम रुख करेंगे। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज हवाओं के साथ लू चलने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आए बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी आज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, न्यूनतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: And for a while, the capital Delhi is literally scorching under the blazing sun. लू भी चलने की आपने बता दी कि ये होगा, but down south the weather has started becoming pleasant because of course we all know कि कुछ ही दिनों में वहां मॉनसून्स तो आ ही जाएंगे. So Chennai will have a partly cloudy sky and there's some possibility of moderate rain and thunderstorm as well. Temperature in Chennai will hover between 28 and 34 degrees Celsius. Bengaluru will also have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 22, while maximum will be around 30 degrees Celsius. Hyderabad will also have a partly cloudy sky and a possibility of thunder lightning and some rainfall. Temperature will hover between a minimum of 31 and maximum of 42 degrees Celsius.
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 24 मई 2026 और बात की जाए सन 1844 की, तो आज ही के दिन अमरीकी आविष्कारक सैमुअल मोर्स ने पहला टेलीग्राफ संदेश भेजा। ये संदेश वाशिंगटन से ब्लाटिमोर तक भेजा गया और संचार के एक नए युग की शुरुआत हुई।
0: On this day in 1830, Sarah Josepha Hale's poem "Mary Had a Little Lamb" was published. तो ये वाली poem अक्सर हम लोग अपने बच्चों को जो है जब वो छोटे होते हैं सिखाते हैं। और 1900

0: काजी नजरुल इस्लाम को 1960 में साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नजरुल ने लगभग 3000 गानों की रचना की और साथ ही अधिकांश को स्वर भी दिया। इनके संगीत के आजकल नजरुल संगीत या नजरुल नीति नाम से भी जाना जाता है।
1: That's right, Farhat. His writings explored themes such as freedom, humanity, love and revolution. He opposed all forms of bigotry and fundamentalism, including religious, caste-based and gender-based. And apart from short stories and novels, he wrote many songs, जिसकी हम लोग ने एक कभी कह सकते हैं दिखाई थी बांगी। Moving on our list, Farhat, किसकी बारी है अब?
0: जी, हम बात कर लेते हैं भजेंद्री पाल की, जिनका आज जन्मदिन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय महिला रही। पहाड़ों की रानी भजेंद्री पाल पर्वत शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवीं महिला पर्वतरोही भी रही और उन्होंने ये कारनामा किया था 23 मई 1984 को।
1: That's right. I remember that when we were young in school, then it was, you know, we used to, जब GK books में पढ़ते थे तो पूरा imagine करते थे that a woman is, you know, towering such a huge mountain. And well, moving on, we have on our list Bob Dylan. Of course, he doesn't need any introduction. And it's his birthday today. Described as one of the greatest songwriters of all time, Dylan has been a major figure in popular culture over his 69-year career. With an estimated 125 million records sold worldwide, he is one of the best-selling musicians. He added increasingly sophisticated lyrical techniques to folk music of the early 60s, infusing it with the intellectualism of classic literature and poetry. And his lyrics incorporated political, social and philosophical influences, defying pop music conventions and appealing to the burgeoning counterculture. There's a beautiful song blowing in the wind. Let's listen to it.

0: और श्रोताओ, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का। उन्हें अपने शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार वीर अभिमन्यु ने किशोर अवस्था में ही कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु का आलिंगन किया था, उसी प्रकार सराभा ने भी अभिमन्यु की भांति केवल 19 वर्ष की आयु में ही हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके शौर्य बलिदान की मार्मिक गाथा आज भी भारतीयों को प्रेरणा देती है और देती रहेगी। यदि आज की युवक सराभा के बताए हुए मार्ग पर चले तो न केवल अपना और बल्कि देश का भी मस्तिष्क ऊपर कर सकते हैं।
1: फरहत, नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज अ वेरी वेरी रेनाउंड लिरिसिस्ट, इजंट इट? तो क्यों ना उनके बारे में बात की जाए।
0: बिल्कुल, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की हम बात कर रहे हैं। मजरू की कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों ओर फैली, जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्जबागों से निकालकर दुनिया के दिगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने रोमानियत को भी नया रंग और ताजगी प्रदान करी। पूरी कोशिश की जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। मजरू सुल्तानपुरी ने 4 दशक से भी ज्यादा अपने लंबे सिने करियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गीतों की रचना की है। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये खूबसूरत
2: क्या।

0: और मजरू सारा कहते भी थे कि क्या भला है जो मुझको याद करोगे, मैं तो एक ख्वाब हूँ भूल जाओगे।
1: बट ऐसे ख्वाब कभी भूले नहीं जाते। आई थिंक ही लिव्स ऑन थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू हिज सॉन्ग्स।
0: जी बिल्कुल, एस डी बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी वाली फिल्मों में पेइंग गेस्ट, 9 2 11, 16 साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, तीन देवियां जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। और फिल्म अभिमान में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गीत लिखे, तो आइए सुन लेते हैं फिल्म अभिमान से ये प्यारा सा गीत।
2: समझ गया ना?
3: जी
2: बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
3: क्या करो जाना?
2: वो भाभी के अवार्ड्स के लिए ऐसी जगह बनाओ।

मजनू सुल्तानपुरी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा वर्ष 1964 में प्रदर्शित फिल्म दोस्ती में अपने रचित गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया।

0: इंडीड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मन ही नहीं कर रहा है कि रुके, इज़न्ट इट, बट आगे बढ़ना है, बिकॉज वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू राजेश रोशन ऑन हिज बर्थडे टुडे. एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट ही इज एन अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर. ही वॉज बोर्न टू म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, हुज रियल नेम वॉज रोशन लाल नागरथ. एंड हिज फादर, दो दे केम फ्रॉम पंजाब, बट उनके सारे गीतों में आप देखिए ही हैज इनकॉर्पोरेटेड, बहुत से उनके क्रिटिक्स ये भी कहते हैं दैट उन्होंने कुछ गाने लिफ्ट किए, बट नन द लेस आई बिलीव दैट एवरी आर्टिस्ट इज इंस्पायर्ड बाय सम अदर आर्टिस्ट ऑल्सो. सो वाइल ही इनकॉर्पोरेटेड सम पंजाबी फोक म्यूजिक ऑल्सो एंड ही ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सम वेस्टर्न म्यूजिक एज वेल.
1: जी सर, और हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान जूली गाने से भी मिली. उस गाने ने उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट संगीत निर्देशक का अवार्ड भी दिलाया.
0: एब्सोल्यूटली. एंड राजेश रोशन स्कोर्ड फॉर मेनी फिल्म्स लाइक कुंवारा बाप, देश परदेस, मनपसंद, लूटमार, बट आपने जैसे कहा कि जूली एक वो फिल्म थी जिसने बहुत उनको वो किया. लेकिन एक बहुत ही दूसरी फिल्म का एक गाना हम लोग सुनते हैं जो सबके दिलों को शायद छू जाए.

0: कुमार सोनू और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म कहो ना प्यार से।
1: That's right, and I remember the frenzy that came with this film and the music. But now, of course, we can't play the entire song because there are only 25 seconds are left to wrap up the show, Farhat.
0: जी बिल्कुल, इसके साथ ही फरहत और सारा को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

0: मरीजों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच

0: सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts, as well as a new AIIMS for North Bengal, have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed by the state special investigation team before a court in Nashik.

0: And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकिरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को भी शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में चार मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरिकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दोतरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ियात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किये। पेश है एक रिपोर्ट।
2: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आजाद और खुले हिंद बहरुल्काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनजर रखते हुए वज़राए खारजा तरजीह शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने के बारे में ख्यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल्काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी तौर पर मुतालिका दीगर बैनुल्अक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कनाडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तिजारत ने मुत्तला किया है कि तिजारत, सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे सीईपीए के मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में दोतरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे, जो इस दौरे का मरकजी महवर होगा। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकिरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनक्किद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को खत्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुजाकिरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फायदेमंद सीईपीए को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरक मकसद 2030 तक दोतरफा तिजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुंचाना है। मगरबी बंगाल में इस साल जुलाई से आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज होगा। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग के बाद यह ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम

0: स्वास्थ्य साथी के तहत पहले से मौजूद मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में एक मफाहमत नामे पर जून में नई दिल्ली में दस्तखत होंगे। जनाब अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में पीएम जन औषधि केंद्रों की तादाद 117 से बढ़ाकर 469 करने के सिलसिले में मरकज को एक तजवीज भेजी गई है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अलीपुर द्वार, कालिम्पोंग और जुनूबी दिनाजपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस और शिमाली बंगाल के लिए एक नए एम्स के सिलसिले में तजावीज भी मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में टीसीएस फैसिलिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी ज्यादती और मजहब तब्दील कराने की कोशिश करने के मामले में नासिक की एक अदालत में 1500 सफात पर मुश्तमिल एक फर्द जुर्म दायर की गई है। एसआईटी के चीफ संदीप मिटके के मुताबिक ये फर्द जुर्म चार मुलजिमान दैनिक दानिश शेख, निदा खान, मतीन पटेल और तौसीफ अत्तार के खिलाफ कल दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक 7 से 8 अफराद के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म अगले 3 से 4 रोज के दौरान दायर की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशेवर अफराद की तरबियत यकसां तौर पर अहम है। उन्होंने ये बयानात कल नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को हिफ्जान सेहत के निजाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। वहीं बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात को मुल्क के लिए हार्डवेयर के तौर पर काम करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के उभरते हुए तिब के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एजाज देकर भारत अपने हिफ्जान सेहत के इको निजाम के मुस्तकबिल को एक शक्ल दे रहा है। मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड के बारे में बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है जो कि हिफ्जान सेहत में पेशेवराना सलाहियत, मफाहमत और साख को पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीतर अवामी सलाहों मशवरे के लिए वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक, तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाहों मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी नरेगा 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़े किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि उबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायमा कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्ते, इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले के से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मुसव्वदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त, शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। वीबीजी राम जी एक्ट 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर

0: खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाके के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाके की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और ओडिशा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाती बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रनामे तकसीम किये, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान RP सिंह के इस बयान को सफे अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक TCS जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली, वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ग्राहक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज़ आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूं। आप मेरी आवाज़ बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी मेरे यानी सुरति के साथ, और जाते जाते ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए सुनते हैं। इस प्यारे से गीत को धड़कन फिल्म से ये गाना है, और उसके बाद ठीक 9 बजे हिंदी में समाचार, 9:10 पर पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार, लेकिन अभी ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल पर ही पासी के एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है लोपा।
2: नीलेश भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ख्याल आया कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है।
3: मेरे पिताजी की किडनी 97 में खराब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में उनका इलाज करवाया था। डॉक्टर भरत भाई ने कहा कि जो किडनी है उनके अंदर एक स्टेंट रखना पड़ेगा। तो 2004 में डॉक्टर ने कहा कि जो स्टेंट रखा था वो स्टेंट अभी काम करना बंद कर दिया है। अभी आपके पास दो इलाज है, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी देने की बात कही कि मेरी एक किडनी आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छी लाइफ मिल सके। मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है। मेरे ब्रदर को भी मना किया कि मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूंगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में दो बार डायलिसिस शुरू हुआ और मैं मेरे पिताजी को जब ये डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस वहाँ पे करवा रहे थे। और वहाँ पे ख्याल आया कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस की पीड़ा हमने तो देखी ही थी। तो डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, क्वांटिटी लाइफ मिलती है। ये सोच, ये विचार कि मुझे डायलिसिस सेंटर के जो वेटिंग रूम है उसमें आता रहता था। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी तो ऐसी मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनू भाई शाह हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे। तो चिनू भाई के साथ ऐसे एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई। तो चिनू भाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब जानते हो किडनी के बारे में, इतना सब काम करना चाहते हो, आप हमारी संस्था में जुड़िए। मैंने शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया कि किडनी खराब ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किडनी कैसे खराब हो जाती है उसके बारे में लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो लोग की किडनी खराब हो जाती है तो परिवार में से नहीं दे सकता है तो उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। तो उसको क्वालिटी लाइफ मैंने जब ये रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से उनको किडनी का दान हो सकता है। तो मैंने सूरत शहर के अस्पताल के आईसीयू के डॉक्टर का कांटेक्ट करना शुरू किया, शहर के न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया कि ऐसे जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें उनका जानकारी दीजिए कि जिससे हम उसका किडनी का दान करवा सके।
2: तो जब आप डॉक्टरों से मिलने जाते थे तो उनका रिस्पांस कैसा था?
3: 2005 की बात करें तो पूरे देश में अंगदान के बारे में बात ही नहीं थी। तो बहुत कठिन भी था क्योंकि लोगों को कंसेप्ट भी उस समय का पता नहीं था और लोगों को ऐसा भी था कि एक जो टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी है वो कैसे लोगों को अंगदान के बारे में समझा पाएगा। लेकिन मैंने मेरी पूरी बात बताई कि मैं क्यों ये क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, मेरे फादर का इंसिडेंट उन लोगों को बताया। तो मैंने बोला कि आप हमें जानकारी दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा। वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्त आश्रम अस्पताल में एक व्यक्ति ब्रेन डेड थे, उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवारजनों को अंगदान का महत्व समझाया।
2: उनका रिएक्शन कैसा था जब आप?
3: उसका वही था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी हमने बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, लेकिन आप उनके किडनी का दान करोगे तो दो लोगों को नया जीवन मिलेगा और नया जीवन देने का काम ईश्वर का काम है। और आप जब ये ईश्वरीय कार्य करते हो, जो दो व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है तो उनको नया जीवन मिलेगा, एक डायलिसिस की जो पीड़ा है उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी। और वो परिवार ने हाँ कहीं, मैं आज भी मानता हूँ कि वो दिव्य आत्मा की।
2: पहला अंगदान किया कब आपके अंदर क्या महसूस हुआ और जिनको ये अंगदान किया गया उनका रिएक्शन क्या था, कुछ उनके बाद भी शायद आप मिलते हैं सभी लोगों को?
3: उस समय तो लोगों के साथ, क्योंकि हमारे लिए भी पहला इंसिडेंट था, लेकिन खुशी बहुत थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी की तकलीफें देखी थी। मैं देख रहा था कि उनकी पीड़ा क्या है, क्योंकि मैं मानता हूँ, उस समय भी मानता था और आज भी मानता हूँ कि जो व्यक्ति डायलिसिस पे होता है वो अपनी मृत्यु को हर एक दिन नजदीक से देखता है। जो दो व्यक्ति को हम लोगों डायलिसिस में से मुक्त करवा पाए वो एक खुशी थी।
2: पहले किडनी के लिए ही सोचा था आपने, क्योंकि आपके फादर की किडनी के लिए आप डायलिसिस करवाते, उसके बाद में बहुत सारे अंगों का दान कार्ड हुआ जिसमें सूरत में ही पहली बार कृत्रिम हाथ का भी मरण हुआ था, तो तब क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? और जब मैं आप डॉक्टर से बात की तो वो जर्नी कैसी थी आपकी?
3: लोपा जी, उस समय गुजरात में केवल 5-7 ही किडनी ट्रांसप्लांट की अस्पताल थी। 2005-06 की हम बात करें तो गुजरात में ट्रांसप्लांट भी केवल किडनी का ही हो रहा था। मैं बात करूं, जनवरी 2006 में हमने किडनी का दान करवाया और दूसरे ही महीने 8 फरवरी 2006 के दिन सूरत के स्मिमेर अस्पताल में एक 24 साल का लड़का था, वो ब्रेन डेड हुआ। हमने उनके पिताजी के साथ में किडनी डोनेशंस की बात कही, उन्होंने हाँ कही, तो हमने IKDRC को कांटेक्ट किया कि हम लोग एक और आज ब्रेन डेड पेशेंट है और उनका किडनी का दान करना है। और उसी समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कॉल आया कि नरेश भाई, मुझे मालूम पड़ा कि आज आप किडनी का दान करवा रहे हो, तो क्या लीवर भी पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो मैंने कहा कि गुजरात में तो लीवर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रहा है, तो लीवर भेजेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा, वो चिंता आप छोड़ो, मैं बाकी की व्यवस्था करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये बातचीत करता हूँ किडनी के साथ में लीवर के दान के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको जितने भी ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है वो करवा। तो फिर लीवर का डोनेशन हम लोगों ने करवाया और वो लीवर हैदराबाद की ग्लोबल अस्पताल में भेजा गया था। किडनी अहमदाबाद की IKDRC में डोनेट की गई।
2: ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, जब मतलब मैं आप समझाने जाते हैं फैमिली को कि ब्रेन डेड, आपको ये न्यूज मिलती है भाई ये बंदा ब्रेन डेड हुआ है, तो वो प्रोसेस फैमिली को समझाना, फिर उसके ऑर्गन जब डोनेट करने जा रहे, वो प्रोसेस कितने टाइम तक की होती
3: है? जिसको भी आज ऑर्गन की जरूरत होती है या हमारे पास कभी भी कोई पेशेंट आता है, तो पहले तो हम IKDRC को ही इन्फॉर्म कर देते थे क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल थी तो वहाँ ही पूरा ऑर्गन सब जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं तो हम सोटो को इन्फॉर्म करते हैं और सोटो उनका एलोकेशन करता है अलग अलग अस्पतालों में। पहले जो होता है स्टेट का, जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट विद इन स्टेट होती है वो स्टेट के अलॉट किया जाता है। स्टेट में नहीं है जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट वो रोटो में जाता है, रीजन में जाता है। रीजन में नहीं होती है तो फिर नेशनल्स में जाता है, और नेशनल में नहीं होती है तो इंटरनेशनल पेशेंट को अलॉट करते हैं। अभी जो आपने बात कही कि वो कितने समय में ऑर्गन्स का प्रोक्योर करना चाहिए, सबसे ज्यादा है हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है रेस अगेंस्ट टाइम है। हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है और वो समय शुरू होता है जब जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं, हार्ट का चेस्ट ओपन करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, वहां से वो समय शुरू होता है। फिर हार्ट प्रोक्योर करके ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में पहुंचाना होता है और वहां से वापस एयरपोर्ट से जो रिसिपिएंट अस्पताल है वहां रिसिपिएंट अस्पताल में पहुंच के जो रिसिपिएंट है उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करके उसका हार्ट ब्लड सप्लाई शुरू करना, वो समय होता है 4 घंटे का। एक एक मिनट बहुत क्रूशियल होती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। तो हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में करना पड़ता है, लंग्स का 6 घंटे में करना पड़ता है, लीवर का 12 घंटे में करना पड़ता है, किडनी जो है वो 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होती है, हैंग्स का भी 6 घंटे के अंदर। लेकिन इस बीच में जितना कम समय में ट्रांसप्लांट होता है इतना अच्छा है।
2: देश में पहला अंगदान दो हाथों का कृत्रिम हाथों का सूरत में हुआ, कैसा रहा? उससे भी आप मिलने गए थे?
3: देश में पहला हैंड का डोनेशन सूरत में नहीं हुआ है। मैं बात करूं तो हैंड डोनेशंस का जो पूरे विश्व की बात करो तो 98 में USA में पहला हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। हमारे देश में 2015 में हैंड डोनेशन और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई कोची में पहला देश का हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन सूरत ने जो इतिहास बनाया है, जो माइलस्टोन बनाया है, ये है कि अक्टूबर 2021 में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन, 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशन सूरत से करवाया था और उनका ट्रांसप्लांट पुणे के 31 साल की लड़के में हुआ था। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन उस समय था। लेकिन सितंबर 2024 में हमने सूरत से ही वलसाड़ की एक 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशन करवाया था। सभी डेटा हमने देखा तो उसके हिसाब से वो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो सबसे यंगेस्ट है इन वर्ल्ड हैंड डोनेशन के अंदर। सूरत से 4 या 5 दिन के बच्चे की किडनी का भी दान हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सूरत से जो 2017 में एक 14 महीने का बच्चे का हृदय का भी डोनेशन हुआ था और उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय डोनेशन की पहली घटना थी। और उसका जो ट्रांसप्लांट है वो ट्रांसप्लांट मुंबई में 3.5 साल की बच्ची में हुआ था। इसी तरह से कोरोना के समय में पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति बहुत कम चल रही थी और उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे। और उसी समय दिसंबर 2020 में सूरत से 2.5 साल के बच्चे का, उनके किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस की वो पहली घटना थी। और उसका जो हृदय और जो फेफड़ा है वो रशिया और यूक्रेन के 2 बच्चों में चेन्नई के MGM अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया था।
2: ऐसा कोई किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो, से बात की और आंखों में आंसू आ गए?
3: लोबा जी, हर एक किस्सा जो है वो दिल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि किसी को अंगदान के लिए तैयार करना, राजी करना, और ऐसे समय पे जब ये परिवार में रुदन है, आक्रन है, और ये कंसेप्ट को समझा के उसको तैयार करना और बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम लोग भी रोते हैं, लेकिन हर एक केस अलग अलग है। लेकिन मुझे 2 केस बहुत ही टच किए हैं। वो एक है जो 2017 में 14 महीने का लड़का था, उसके हार्ट और दूसरे अंगों का दान करवाया था। वो बहुत ही मुझे टच हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं इतने सालों में इतने छोटे बच्चे के परिवार के साथ काउंसलिंग कर रहा था। और जब भी मैं सिविल अस्पताल के अंदर उनको काउंसलिंग किया और जब ये ऐसा फूल जैसा मासूम बालक सोया हुआ था, ऐसे बच्चों को, बच्चे के परिवार को समझाना बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ के माता पिता को, के जिन्होंने ये निर्णय किया। बहुत सामान्य परिवार से वो लोग है, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए है, लेकिन उन्होंने हाँ कही तो उनके जो हृदय का दान हुआ। और उनके हृदय दान की वजह से मुंबई में 3.5 साल की बच्ची जो 16 महीने से बेड पे ही रही थी, ऐसी बच्ची को नया जीवन मिला। और उसी तरह जब भी हमने हैंड्स का डोनेशन जो करवाया था, और अक्टूबर 2021 में जो लड़का था, वो लड़के का हैंड का डोनेशन करवाया, वो भी बहुत ही, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है और एक्सटर्नल ऑर्गन का डोनेशन करवाना अलग है। इंटरनल ऑर्गन में कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पूरी मानसिकता बदल जाती है।
2: अच्छा, ये पूरी जर्नी में आपने डोनेट लाइफ नाम कैसे आपने चूज किया?
3: नहीं, मैं तो 2005 से कार्य शुरू किया था। 2013 में सूरत के जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर

0: उनका कॉल आया कि हमारे एक ऑफिसर की किडनी खराब है, आप क्या हेल्प कर पाओगे। तो मैंने उनको कहा कि मैडम मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर को गाइडेंस दे पाऊंगा। तो सर का नाम IKDRC में रजिस्टर्ड हुआ, वहीं सर अहमदाबाद ही रुके और वहीं डायलिसिस भी उन्होंने शुरू करवाया। थोड़े महीनों के बाद सूरत से एक किडनी का डोनेशन हुआ और वो किडनी सर के अंदर ट्रांसप्लांट हुई। उनमें ट्रांसप्लांट हुई तो सर ने बताया कि नीलेश भाई आज मुझे नया जीवन मिला है, तो मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं और वो ट्रस्ट बना के हम लोग नेशनल लेवल पे प्रवृत्ति को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने मना किया कि सर मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है और टिकाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सर खुद यूपी से थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग बनाएंगे। फिर एक साल के बाद मैंने हाँ कही तो अभी नाम क्या करना है उसके ऊपर सोच विचार हुई। बहुत से अलग अलग नाम, हमारी जो टीम थी हम लोग साथ में बैठते थे, तो फिर इसमें सोच आई कि जो हमारा हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को जीवन देने का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये डोनेट लाइफ के नाम से ही हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे और डोनेट लाइफ नाम हमने फाइनल किया।
1: 25 सालों की मेहनत, जब पद्म से अवार्ड के लिए आपका नाम गया, जब आपको पता चला, तब फैमिली के फ्रेंड्स पर आपके रिएक्शन क्या?
0: मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आज इतने सालों की, वो कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि जो परिवार में ऑर्गन खराबी है और वो परिवार को जब भी किडनी मिलती है, लीवर मिलता है, हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, इवन हैंड का डोनेशन से उनको ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। मैं हमेशा कहता हूँ जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी कि जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है, जो बीज बोया बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है।
1: आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अंगदान के बारे में जागरूकता नहीं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे और अंगदान जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, वो लोगों को क्या बताना चाहेंगे?
0: लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि आपको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना चाहिए। पहले लोग ऐसा कहते थे कि व्यक्ति का हृदय बंद हो गया तो उसकी डेथ हुई है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। तो हमें ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना है और हमें उससे ऑर्गन डोनेशंस करवाना है। लोग ऐसा मानते हैं अंगदान नहीं करना चाहिए, हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। आज लोग अंगों की बात छोड़िए, आंखों का दान करने से भी लोग आज आगे नहीं आते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जब जो हम उनका अग्निदाह करते हैं जो पार्थिव देखा वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है, तो ये सब उसमें से बाहर निकलना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ, जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं तो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्य को काम में लगेंगे। दोस्तों ये ऑर्गन्स इससे भी ज्यादा कीमती है, ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम उनके अंगों का दान करवाएंगे तो हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है उनको नया जीवन मिलेगा। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। हमारे देश के यशस्वी वडाप्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने हमें 2047 में जब भी हमारा देश आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारा देश विकसित भारत होगा वो परिकल्पना हमें दिखाई है। हमारी संस्था ने भी एक मिशन बनाया है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये

0: ये प्रोग्राम में हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बोल रहे हैं कि जो 20 साल पहले जो हमने बीज बोया था वो बीज आज वट वृक्ष बना है, लेकिन आगे की रेस आपको कंप्लीट करनी है।
1: तो ये थे दिनेश भाई मालेवाला, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की तो वो बताया, और इनके लिए हूँ इनके बहुत ही आभारी।
0: थैंक थैंक।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लोपा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है

जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहां के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके बृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन

का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दासता की बीड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाखराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में

ये महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया, क्योंकि हड़ताल तुड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी दो दिन बाद शहीद हो गए। इन तीन क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़कर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूस की थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और

विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: India are expected to witness thunderstorms and lightning today. And on to sports now. Gurinderveer Singh has clinched the gold in the men's 100-meter event at the 2026 Athletics Federation Cup in Ranchi with a new natural record timing of 10.09 seconds. Animesh Kujur secured the silver, while Pranav Pramod took the bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। कांगो में इबोला संक्रमण से मरने वालों की संख्या 204 हुई। अफ्रीकी संघ ने इसके और देशों में फैलने की चेतावनी दी। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की

0: अत्यंत आवश्यकता है।
1: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंचाना है। अमरीका में व्हाइट हाउस की सुरक्षा जांच चौकी पर गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पुलिस जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई है। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि अधिकारियों की जवाबी फायरिंग में घायल होने के बाद संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने बताया है कि 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति ने सुरक्षा जांच चौकी पर गोलीबारी की। संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। घटना में एक नागरिक भी घायल हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसे संदिग्ध की गोली लगी या अधिकारियों की फायरिंग से चोट पहुंची। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कांगो में इबोला प्रकोप के कारण अब तक 204 लोगों की मौत हो गई है। अफ्रीकी संघ के स्वास्थ्य एजेंसी ने कल चेतावनी दी थी कि कांगो और युगांडा के अलावा अफ्रीका के अन्य देशों में भी इबोला वायरस फैलने का खतरा है। रेड क्रॉस ने बताया है कि कांगो में उनके 3 स्वयंसेवकों की भी इस वायरस के कारण मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी की समीक्षा के लिए आयोजित 4 सप्ताह का सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। सम्मेलन के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में वियतनाम के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत डो युंग वियत ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए संधि के भविष्य प्रभावशीलता को लेकर चिंता जताई। श्री वियत ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि सम्मेलन किसी अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज पर सहमति नहीं बना सका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने भी सम्मेलन में सहमति नहीं बनने पर निराशा व्यक्त की। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकार देशों का 11वां समीक्षा सम्मेलन 27 अप्रैल से 22 मई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस बीच रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमरीका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका में सांसदों और आवर्जन अधिकार कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने ही देश से आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। वेनेजुएला की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना मचाडो ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। नोबेल विजेता मचाडो ने यह बात कल पैनामा सिटी में वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के दौरान की। मचाडो दिसंबर से निर्वासन में रह रही हैं। वेनेजुएला में 11 महीने तक छिपकर रहने के बाद नॉर्वे गई थी, जहां उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव कब होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सराहना की है। रोड्रिगेज ने ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल कीमतों के बीच वेनेजुएला के तेल उद्योगों को अमरीकी निवेश के लिए खोल दिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए मैदान में उतरेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त और 2024 के फाइनलिस्ट अलेक्जेंडर ज्वेरेव और सातवीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्स की भी आज चुनौती होगी। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कोको ग्राफ और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी आयरना सैबालेंका अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी होगी। एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोनिलर की जोड़ी की भी चुनौती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमरीका में

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5वें चरण में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने अमरीका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। उधर महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन है। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए लुत्फ उठाते हैं फिल्मी गीतों का। पहला गीत फिल्म जिस फिल्म से हमने लिया है वो है हमराज। आइए सुने।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप लुत्फ उठा रहे हैं फिल्मी गीतों का। आजकल दिल्ली की सड़कों के किनारे खिले हुए अमलतास के पीले पीले फूल आपका भी ध्यान खींचते हैं, है ना? गजब है ये अमलतास के फूल, जितनी गर्मी उतनी ही इनमें खिलखिलाहट, मानो मुस्कुराकर ये सूरज को चिढ़ा रहे हों। पीले और सुनहरे रंग के झूमर जैसे गुच्छों में खिले अमलतास को देखकर दिल में कोई कविता अंगड़ाई लेती है। अमलतास के कोमल फूलों तुम भी कमाल करते हो, तपती जलती धूप में खुलकर खिलकर हंसते हो, काश कि ये हुनर तुम्हारा मुझको भी आ जाए, जीवन की कठिन दोपहरी में मेरा दिल भी मुस्काए। फिलहाल कुछ ऐसा ही कह रहा है ये गीत भी, आइए सुनें।

ये ख्वाबों का महकना, गुलों का खिलना और दिल में प्रेम का करवटे लेना जिंदगी का गीत है, और गीत ही जिंदगी का रस है। जैसे धरती पर सावन आता है, वसंत ऋतु आती है और चारों ओर फूल महक उठते हैं, इसी तरह जब कोई दिल को भा जाता है तो मन के मौसम में भी बहार आ जाती है और धड़कनों पर गीत बजने लगता है। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, जब हम खुश होते हैं, मतलब आप खुश होते हैं और खुशी में कोई गीत आप गुनगुनाते हैं तो उसकी धुन, उसके संगीत पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब आप उदास होते हैं और उदासी में कोई गीत सुनते हैं तो आप उसके भाव, उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं, है ना? हैरत की बात, इस बार जरूर महसूस कीजिएगा। फिलहाल प्यार का एक नगमा सुनते हैं, फिल्म मिशन कश्मीर से।

0: क्षमा कीजिएगा, ये गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम कहानी से।
1: तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो, तो, तो, तो।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं फिल्म सॉन्ग। साथियों, 24 मई रविवार का दिन है और ये छुट्टी का दिन है। आपको कभी ये ख्याल आया कि रविवार को हमें छुट्टी क्यों मिलती है? चलिए हम बता देते हैं। इसकी शुरुआत जहां से भी हुई हो, इस बारे में ईसाई धर्म में की मान्यता है कि ईश्वर ने धरती बनाने में 6 दिन लगाए थे और इसके बाद उन्होंने 7वें दिन यानी रविवार को आराम किया था। तो और ये भी कहते हैं कि साल 1883 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले रविवार की छुट्टी का आदेश दिया था और ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूली बच्चों को रविवार का अवकाश देने का प्रस्ताव दिया गया। बाद में ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में मजदूर वर्ग सप्ताह के 7ों दिन काम करते थे, जिससे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को रविवार के दिन सबके लिए अवकाश घोषित करना पड़ा और इस तरह से हमें ये रविवार यानी छुट्टी का दिन मिला। फिलहाल इसी से जुड़ा हुआ एक बेहद प्यारा गीत आपके लिए।

देखिए वो पास रहे दिल के ये तो अच्छा है, और वो आंखों के सामने रहे ये और भी अच्छा है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अकेलापन खाने को दौड़ता है। इसलिए ना तो अकेले रहिए और ना ही अपनों को अकेला छोड़िए। हाँ, माना कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन रोज ना सही पर छुट्टी के दिन तो आप अपनी अपनों का साथ तो दे ही सकते हैं। पता है अकेलापन बहुत खतरनाक होता है। अमेरिका की एक स्टडीज में ये सामने जानकारी आई है कि सोशल आइसोलेशन और अकेलेपन का जो संबंध है वो सीधे तौर पर मौत से जुड़ा है। सोशल आइसोलेशन से मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को परिवार और दोस्तों या रिश्तेदारों की ओर से अकेला छोड़ दिया जाता है, या कोई व्यक्ति भावनात्मक तौर पर खुद को अकेला महसूस करता है। इस स्टडी में ये पाया गया कि अगर आप लोगों से दूर रहते हैं तो आपके बीमार होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दरअसल ये जो अकेलापन होता है ये शरीर के कुछ हार्मोन्स को ट्रिगर करता है, और ऐसे में इम्यून जो सिस्टम है हमारा वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो ये जरूरी है कि हम अपने अपनों से, अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहें। किसी नए शौक को हमें पालना चाहिए, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, कुछ नया करने की कोशिश करना, अपनों से जुड़ना, दिल की बातें करना। और हाँ, हम हैं ना आपके साथ आकाशवाणी FM गोल्ड, लगातार आप जुड़े रहें, सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल एक बेहद प्यारा गीत आपके लिए मेरे पास है, आइए सुनें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत के इस सफर पर आज मैं हूं आपके साथ कुसुम। इन दिनों मौसम का जो बदलता मिजाज है वो कुछ इस तरह से हो गया है कि दिल कह रहा है ये कैसी आग बरसती है आसमानों से, परिंदे लौट के आने लगे हैं उड़ानों से। इस मौसम की खुशगवारी और इसकी बेदर्दी को शायरों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शायरी में पिरोया है। शायर बेदिली हैदरी लिखते हैं कि गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। उर्दू शायर अतहर नफीस धूप को परेशानी का सबब बताते हुए लिखते हैं कि ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया। खलील रामपुरी गर्मी के जो वक्त हैं इसको महबूब की गली से हवा आने की उम्मीद करते हुए लिखते हैं, गर्मी बहुत है आज खुला रख मकान को, उसकी गली से रात को पुरवाई आएगी। एक और शायर दिल को उम्मीद देते हुए लिखते हैं कि तू जून की गर्मी से न घबरा कि जहां में ये लू तो हमेशा न रहा है न रहेगी। और मेरा दिल क्या कह रहा है इस गीत में सुनते हैं।

और अब ये फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, क्योंकि देविका आ गई है स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और ये जुड़ते हैं समाचारों से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी।

की। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आप्टे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आप्टे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी रघुवीर जी कि जब आपको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने की जानकारी मिली तब

0: आपके मन में कैसी भावनाएं उमड़ी, क्योंकि एक तमाशा जैसी लोक कला को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना ये पहली बार हो रहा है, तो क्या भावनाएं थी आपकी?
1: बहुत अचंभित हुआ था मैं, मुझे ऐसा लगा था मैं कहाँ हूँ, स्वर्ग में हूँ या धरती पर हूँ, और इतना भारी पद्मश्री खिताब मेरे को मिला है, ये सुनकर मेरे जो पुराने अनुभव वो सब मेरे सामने आ गए और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया।
0: तो रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
1: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है, बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया, तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते हैं, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था, तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवे दिन मैं स्टेज पे गया, ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई, हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने तमाशा निकाला जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम केळकर यांचे चिरंजीव रघुवीर केळकर सर, कांताबाई सातारकर, तमाशा मंडळ संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का स्टेज पे आया, वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
0: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
1: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी, तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की जो आनंद लोकनाट्य करके है वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला, तो हमने सोचा हम चारों बहन की माँ को साथ देना चाहिए, तो मेरी बड़ी बहन अनिता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा, और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी यत्ता हो गई है।
0: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना, आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
1: इसके पीछे ऐसी सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का, तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
0: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
1: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहे, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में, तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आईच काळी बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो, और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
0: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगा छिंदवाड़ा के पात्र को निभाना भी और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
1: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे है। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा रजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
0: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
1: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायर के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
0: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
1: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
0: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
1: हाँ।
0: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
1: देखिए, अभी शहरों के जो लोग है उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
0: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
1: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
0: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
1: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
0: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
1: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं। मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिक्का बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियोज निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
0: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे

0: पात्र आपने निभाई इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
1: बहुत बेहतरीन रही है
0: रघुवीर जी। तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
1: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन ढका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढकी रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाशे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
0: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
1: नहीं नहीं बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे ताले सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले उनको भी पूछा, मैं अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
0: रघुवीर जी आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
1: होता है।
0: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते है और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगा है।
0: रघुवीर जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 12:25 और ठीक 18 सेकंड देविका लेकर हाजिर है। जी हाँ, वो जो एक फिल्म थी और आज वो जो एक फिल्म थी में वो फिल्म है 1978 की देश परदेश। जी हाँ, देश परदेश। श्रोताओं, देश परदेश एक ऐसी फिल्म है जो केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि विदेश में बसे भारतीयों के संघर्ष, टूटते सपनों, पारिवारिक भावनाओं और अवैध प्रवासन की दुनिया को भी सामने लाती है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण देवानंद साहब ने किया था और उन्होंने स्वयं इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। फिल्म में टीना मुनीम के अतिरिक्त प्राण साहब, अजीत खान, अमजद खान तथा प्रेम चोपड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसके साथ साथ श्रीराम लागू, एके हंगर, पेंटल और महमूद जैसे सशक्त कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे। ये फिल्म अपने समय की तकनीकी दृष्टि से भी अत्यंत उल्लेखनीय मानी गई। फिल्म को सेट डिजाइनिंग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ जबकि इसके संगीतकार राजेश रोशन को उनके भी उत्कृष्ट संगीत के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। फिल्म के गीत और संगीत ने इसकी भावनात्मक गहराई को और अधिक प्रभावशाली बनाया।

जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज में गीत आपने सुना। और आपको बता दें कि देश परदेश के जो गीतकार थे वो थे अमित खन्ना। सुन रहे हैं आप वो जो एक फिल्म थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी भारत के एक साधारण ग्रामीण परिवार से शुरू होती है। समीर सहानी एक मेहनती और जिम्मेदार युवक है जो अपने माता पिता, पत्नी रमा, छोटी बेटी और छोटे भाई वीर के साथ रहता है। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। समीर अपने परिवार के बेहतर भविष्य का सपना देखता है और वह चाहता है कि उसके माता

पिता सुख से रहें, उसकी बेटी अच्छी शिक्षा पाए, उसका भाई वीर भी सम्मानजनक जीवन जी सके। उसी दौरान उसे इंग्लैंड जाकर काम करने का अवसर मिलता है। उस समय भारत के अनेक युवाओं की तरह समीर भी ये मानता है कि विदेश, विशेषकर लंदन, अवसरों की समृद्धि की भूमि है। भारी उम्मीदों और सपनों के साथ वे अपने परिवार को छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। लंदन पहुंचने के बाद समीर की मुलाकात अपने गॉडफादर मिस्टर बर्न्स से होती है, जो वहां प्रभावशाली व्यक्ति है। मिस्टर बर्न्स की बेटी सिल्विया भी समीर के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समीर धीरे धीरे वहां काम जमाने लगता है और जी हां, गुरनाम नामक व्यक्ति के साथ साझेदारी में एक पब भी खरीद देता है। बाहर से देखने में गुरनाम सफल और प्रभावशाली व्यवसाय प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये एक बड़े अवैध गिरोह का हिस्सा होता है। समीर लगातार अपने परिवार को पत्र लिखता रहता है। वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन पूरे परिवार को इंग्लैंड बुला लेगा। भारत में उसका परिवार उन्हीं पत्रों के सहारे जीता है। माता पिता बेटी की सफलता पर गर्व करते हैं। रमापति के लौटने की प्रतीक्षा करती है और वीर अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है। लेकिन धीरे धीरे समीर के पत्र आने बंद हो जाते हैं। कई सप्ताह बीत जाते हैं, फिर कई महीने। परिवार चिंता और भय में डूब जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर समीर के साथ हुआ क्या है। अंततः वीर यह निर्णय लेता है कि वह स्वयं इंग्लैंड जाकर अपने भाई को खोजेगा।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप वो जो एक फिल्म थी कहाँ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz। और थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे कि वीर जब लंदन पहुंचता है तो वहां उसके साथ क्या होता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

12:40 और ठीक 35 सेकेंड आप सुन रहे हैं जी हाँ आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है वो जो एक फिल्म थी जिसमें हम बात कर रहे हैं 1978 की फिल्म देश परदेश के बारे में और देश परदेश की कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि समीर ने अपने परिवार को पत्र लिखते हैं लेकिन समीर पत्र लिखना बंद कर देते हैं और इससे परिवार चिंतित हो जाता है और ये बिल्कुल फैसला

लेता है कि भाई वीर जो है अपने बड़े भाई को खोजने जाएगा। वीर का लंदन का सफर जो होता है एक भाई की तलाश नहीं है बल्कि एक भयावह दुनिया का सामना भी बन जाता है। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात गौरी नामक युवती से होती है। गौरी एक मासूम भारतीय लड़की है जिसे परिस्थितियों और दबाव के कारण गुरनाम से जबरन विवाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वीर उसकी मदद करता है और उसे विवाह से बचा लेता है। इस घटना के कारण दोनों के पीछे लोग पड़ जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद वीर धीरे धीरे उस सच्चाई को जानता है जिसे समीर ने शायद बहुत देर से समझा था। वह देखता है कि हजारों भारतीय युवक युविता नकली पासपोर्ट और अवैध तरीकों से इंग्लैंड लाए जाते हैं। उन्हें बेहतर जीवन और ऊंची कमाई के सपने दिखाए जाते हैं लेकिन वास्तविकता अत्यंत क्रूर होती है। ये लोग बेहद कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। गंदे और अस्वस्थ स्थानों पर रहते हैं। उन्हें हर समय पुलिस द्वारा पकड़े जाने और निर्वासित किए जाने का डर सताता रहता है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उन दलालों और गिरोह को देना पड़ता है जिन्हें उन्हें विदेश पहुंचाया। इन प्रवासियों की स्थिति लगभग गुलामों जैसी होती है।

0: जी हाँ, ये गीत फिल्म देश परदेश के बहुत मशहूर गीतों में से एक था और जिसे गाया था किशोर कुमार ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। साउथ शिमला के एक मेगाहर्ट्ज पर देविका है आपके साथ और प्रोग्राम है वो जो एक फिल्म थी और फिल्म है देश परदेश। वीर को श्रोताओं धीरे धीरे पता चलता है कि इस पूरे रैकेट के पीछे गुरनाम, सिल्विया और बंसी जैसे लोग हैं। जब वो लंदन पहुंच जाता है वे भारतीय प्रवासियों की मजदूरी का और यानी कि अपनी कहीं न कहीं उनकी मजबूरी और सपनों का शोषण करते हैं और धन कमाते हैं। बाहर से सभ्य और सम्मानित दिखने वाले ये लोग वास्तव में अपराध और धोखे की दुनिया चला रहे होते हैं। दूसरी ओर ब्रिटिश अधिकारी मार्टिन और भारतीय मूल के अधिकारी कश्यप इस अवैध नेटवर्क को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने पहले समीर को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। जब समीर को सच्चाई का एहसास हुआ और उसने इस अपराध जगत के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की तब गुरनाम और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद समीर रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया और पुलिस रिकॉर्ड में उसे लापता घोषित कर दिया गया। वीर अपने भाई की तलाश जारी रखता है लेकिन हर कदम पर उसे खतरे, झूठ और षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। ब्रिटिश पुलिस भी जो होती है वो गौरी को गुमशुदा होने की शिकायत के कारण वीर पर संदेह करने लगती है। अधिकारियों का मानना होता है कि वीर ने गौरी को भगा लिया है इसलिए वे दोनों आत्मसमर्पण करने के लिए उसे कहते हैं। जांच के दौरान वीर को यह समझ आता है कि समीर केवल अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य चाहता था लेकिन लालच और अपराध की दुनिया ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। समीर की कहानी उन हजार भारतीय प्रवासियों का प्रतीक बन जाती है जो सपनों की तलाश में विदेश जाते हैं परंतु शोषण, अकेलेपन और धोखे का शिकार हो जाते हैं।

प्रति प्रेम, त्याग और भाईचारे की भावना दिखती है, दूसरी ओर लालच, अपराध और मानव शोषण भी दिखाई देता है और उसका अंधेरा पक्ष भी उजागर किया जाता है। यही कारण है कि फिल्म आज भी भारतीय प्रवासी जीवन पर बनी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है।

आज वो जो एक फिल्म थी, मैं बस इतना ही, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और गीत तो इस फिल्म के बहुत अच्छे थे ही। फिलहाल देविका आपसे विदा लेती है और आपको बताती जाती हूँ ठीक 1 बजे होंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना।

0: है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों टीबी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपातकालीन चिकित्सा हीमोफीलिया प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jayashankar said the talks over lunch focused on the latest developments in the Gulf region, while the Indo-Pacific remains an important priority ahead of the Quad meeting. The External Affairs Minister stressed the importance of concluding a trade agreement between India and the United States at the earliest. He welcomed the recent expansion in energy trade and said diversified energy supplies are central to India's energy security.
2: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent, and to East.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, अगला गीत जी हाँ अमित कुमार की आवाज में। फिल्म थी शोले और शबनम।

0: तम क्रमात् अर्थात महानता मनुष्य को मात्र जन्म लेने से नहीं मिलती है, महानता मनुष्य को उसके गुणों से प्राप्त होती है। जैसे दुग्ध से गुरुतर होकर क्रमशः दधि और पुनः दधि से घी बनता है।
1: प्रिय मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र सुमधुर

0: मम नाम सन्दीपः अहम् मम दिनचर्यां वदामि।
1: नमो नमः। मम नाम खुशी अहम् अपि मम दिनचर्यां वदामि।
2: अहम् प्रतिदिनं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि।
3: अहम् प्रथमं भूमेः वन्दनं करोमि, माता पितरौ च नमामि।
1: ततः उषः पानं करोमि, कवोषणं जलं पिबामि।
4: अहम् सपाद 5 वादने शौचं करोमि, तदनन्तरं मुखप्रक्षालनं दन्तधावनं च करोमि।
5: अहम् 5:30 सूर्य नमस्कारं योगासनं च करोमि।
6: अहम् 6 वादने स्वाध्यायं करोमि।
7: अहम् 6:30 मम परिसरं स्वच्छं करोमि।
8: ततः पादोन 7 वादने स्नानं करोमि।
9: अहम् 7 वादने प्रार्थनां करोमि,
10: गीता पाठं च करोमि।
11: तदनन्तरं मातुः पितुः च चरणवन्दनं करोमि।
12: अहम् 7:30 प्रातराशं करोमि,
13: तत्पश्चात् 8 वादने विद्यालयं गच्छामि।
14: अयि श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यत्र ललितमोहन तिवारी श्रावयति संस्कृत हिन्दी ओडिया भाषासु कानिचन वाक्यानि।
15: प्रथमं वाक्यमस्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय दिवसः प्रतिवर्षं मई मासस्य 18 दिनाङ्के आयोज्यते। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। उड़िया भाषा में अंतरजातीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई रे पालित हुए। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, संग्रहालयाः अस्माकं इतिहासं संस्कृतिं च रक्षन्ति, संग्रहालय हमारे इतिहास और संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। उड़िया भाषा में संग्रहालय आमर इतिहास संस्कृति को सुरक्षित रखे। तृतीयं वाक्यम् अस्ति, संग्रहालयेषु प्राचीन वस्तूनि कलाकृतयः च स्थाप्यन्ते, संग्रहालयों में प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां रखी जाती हैं। उड़िया भाषा में संग्रहालय रे प्राचीन वस्तु कलाकृति रखा जाए। चतुर्थं वाक्यम् अस्ति, वयं संग्रहालयानां भ्रमणं कृत्वा ज्ञानं प्राप्नुमः, हम संग्रहालयों का भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उड़िया भाषा में आमे संग्रहालय भ्रमण करी ज्ञान प्राप्त करू।
14: संस्कृत हिंदी भाषाभ्याम सह उड़िया भाषायाः अयम् संगमः स्यात् नूनं ज्ञानवर्धकः। सहृदयाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् विचारान् प्राकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सम्पर्क सूत्रमस्ति nsdsanskrit@gmail.com इति। अयि श्रोतृजनाः, अधुना तु कालः समायातः प्रस्थान वेलायाः। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन् एव काले अभिनवम् एकमंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मंगलम्।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके की दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त तबकत हासिल हो गई है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नजदीक धमाका होने से कम से कम 24 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूदात पर तबादले ख्याल किया और भारत अमरीका कलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामनिगारों को जानकारी देते हुए डॉ जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात और वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काहिल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसीक का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौकफ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दहशतगर्दी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमरीका के कलीदी एतबार से यकसां मौकफ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका कलीदी एतबार से यकसां मौकफ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए चार दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जबरदस्त सबकत हासिल कर ली है। आखिरी खबरें मिलने तक वो 44,891 वोटों से आगे चल रहे थे। सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक तीसरे मुकाम पर चल रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथी पोजीशन पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खान चेंग जोंग के पांच खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खान चेंग जोंग को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और जमीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है।
इस मजमून में सिक्किम के लोगों की जिंदगी में खान चेंगजोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। सिक्किम बाजाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निमटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीजें पेश की हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्जाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असली नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वजन और पैमाइश की जांच के निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जांच मराकिज के रोल को उसत दी है।

हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस के फैलने के पेशेनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफर कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मुकामी हुक्काम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम अज कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाका में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। शुमाली चीन में एक कोयला कान में हुए एक धमाके से कम अज कम 82 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांक्सी सूबे में ल्यू शेनयू कोयला कान में हुआ यह गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल्स जुमरे में यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल विनस जोड़ी बनाकर खेलेंगे जबकि एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के अपने साथी खिलाड़ी मार्सेलो डोमिलिनर के साथ जोड़ी बनाकर मुकाबला करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत के हामिल है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त सबकत हासिल हो गई है। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Hence, French big server Giovanni M. Petsy Pericard, night session on Core Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seven seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles with top-ranked Indian player Yuki Bhambri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Devanshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों

0: के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्यपालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के

0: विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी

0: श्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है नाटक कौटिल्य का संन्यास। इस नाटक के लेखक हैं रतनलाल जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक कौटिल्य का संन्यास।

0: प्रणाम आचार्य।
1: कौन? राक्षस? मौर्य साम्राज्य के नीति चतुर महामंत्री राक्षस। कहिए, इस अर्धरात्रि में आप यहां? राज राजेश्वर सम्राट चंद्रगुप्त स्वस्थ सानंद तो है ना? कहिए महामात्र, आज कौटिल्य की ये जरा जीर्ण देह आपकी क्या सेवा करे?
0: गुरुदेव, मौर्य साम्राज्य को आज आपके सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। भारत भूमि के नब में जिस सूर्य को आपने स्थापित किया था, उसे आज ग्रहण लग रहा है। वैभव और विकास की इस भरी दोपहरी में ही मौर्य साम्राज्य का ये महिमा मंडित सूर्य अब तेजो भ्रष्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा।
1: जो हो रहा है वो मिथ्या है, जो होगा वो मिथ्या होगा, और जो हो गया वो मिथ्या था। तुम्हारा सम्राट आज यही तत्वदर्शन तो सीख रहा है ना? जो सिखाया वो इस रूप में फलेगा, मुझे विश्वास नहीं था राक्षस। जाओ सम्राट से कहो कि राज मंत्र अब कौटिल्य के पास नहीं, उन विधवाओं के से वेशधारी साधुओं के पास है जो सम्राट का परलोक सुधारने में संलग्न है।
0: सम्राट का परलोक सुधरे या ना सुधरे, किंतु बना बनाया लोक तो ध्वस्त होने जा रहा है। इन साधुओं ने सम्राट को कर्तव्य कर्म से एकदम विरक्त कर दिया, इतना विरक्त कि वो प्रजा के भविष्य की तनिक भी चिंता किए बिना अगली पूर्णिमा को सन्यास की दीक्षा लेने जा रहे हैं। और अब मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभालेगा विलासी बिंदुसार,
1: और राज महिषी होगी कनक रेखा, जिसके कुलशील के बारे में विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कभी अपना मौन भंग नहीं किया।
0: आर्य, राज्य प्रजा का है, प्रजा रंजन के लिए है, चंद्रगुप्त के वैराग्य के लिए नहीं, बिंदुसार के विलास के लिए नहीं। राजा का वैराग्य अनिति है, राजा का विलास भी अनाचार है। राज्य में सर्वत्र विरोध है, सेना में विद्रोह फैल रहा है, सीमाओं पर शत्रु सेनाएं ताक लगाए बैठी हैं, और यूनानियों के गुप्तचर अंतःपुर तक में प्रवेश पा गए। महामते, आपके मनोकामना का भव्य प्रासाद ये मौर्य साम्राज्य अब ध्वस्त होने ही वाला है।
1: होने दो राक्षस, साम्राज्य सम्राट सबको ध्वस्त हो जाने दो। कौटिल्य की परिभाषा में जीने की सार्थकता उसी की है जो जनहित के लिए जीता है, जिसके जीवन का एक एक क्षण पराक्रम में परिणत होता है। निकम्मों से कौटिल्य को घृणा है, शून्यवाद को मैं पाखंड मानता, मैं कर्मठ कर्मवाद का पुजारी हूं। सम्राट अपना कर्म भूल गए हैं मंत्रीवर्य, ये राजधर्म का अपमान है, घोर अपमान। प्राणों की एक भी शिरा के शेष रहते ये तो नहीं होने दूंगा। परंतु अब समय आ गया है कि कौटिल्य अपने लिए भी तो कुछ निर्णय करे। अस्तु, जाओ राक्षस, सुख की नींद सो, प्रातः सम्राट के निजी कक्ष में मिलना।
0: आज्ञा दें गुरुवर, आज्ञा दें।

ऐसी ही काल रात्रि थी। मैं कौटिल्य स्वस्थ सबल बलिष्ठ नवयुवक इसी प्रकार बिल्कुल आज की ही भांति किसी अनागत की प्रतीक्षा में बैठा था। मेरा यौवन मेरा अक्षत संकल्प उस दिन एक स्वप्न से खेल रहा था। एक यूनानी विजेता अपने मार्ग की समस्त शक्तियों को अपने दासत्व में जकड़ता हुआ भारत भूमि के अपरिमित वैभव को देख गया था और प्रण करके गया था कि निकट भविष्य में ही यूनान की सुंदरियां गंगा यमुना के निर्मल जल में अपने केश धोएंगी। भारत की संपदा और जनशक्ति को पाकर यूनान सनातन काल तक संसार पर राज करेगा। अलेक्जेंडर के इस स्वप्न पर मेरी आत्मा विद्रोह कर उठी। मेरी मातृभूमि पराधीन हो जाए और मैं जीवित रहूं? मुझे अपने अस्तित्व तक से ग्लानि होने लगी और मैंने अलेक्जेंडर के उस महान स्वप्न से जूझने की शपथ ले ली। और एक

0: एक दिन इस स्वप्न सृष्टि का उपयुक्त नायक भी मुझे मिल गया। नई उम्र और गगन चुंबी महत्वाकांक्षा में उद्दीप्त चंद्रगुप्त। मैंने उसकी शक्तियों को सही मार्ग में प्रवृत्त किया। स्वप्न की एक एक रेखा में उसके प्राण भरे। स्वप्न साकार हो उठा। मेरे देश का बल विक्रम, मेरे देश की मेधा मनस्विता ऐसी चमकी कि यूनानियों की सारी आशाएं निर्मूल हो गईं। किंतु आज चंद्रगुप्त के अंग शिथिल हैं और मन की क्रांति उसे वैराग्य की ओर घसीट रही है। तो क्या कौटिल्य एक नया सम्राट गढ़े, नए जननायक का निर्माण करे, या इस संपूर्ण साकार स्वप्न को पराया हो जाने दे, टूटकर बिखर जाने दे? क्या करे कौटिल्य, क्या करे?
1: प्रणाम गुरुदेव, कष्ट के लिए क्षमा चाहती हूं।
0: कौन? चारुशीला महारानी की संदेशवाहिनी? इस काल रात्रि में तुम यहां कैसे आई? महारानी ने इस बूढ़े ब्राह्मण को कैसे याद किया? क्या आदेश है सम्राट साम्राज्य का मेरे लिए? क्या देश निकाले का आदेश लेकर आई हो?
1: आचार्य देव, सम्राट और कुमार बिंदुसार की प्रवृत्तियां देखकर राजमहिषी कई दिनों से चिंतित थी। पग पग पर उन्होंने उनके निश्चयों का विरोध किया, किंतु कुमार ने उनके मार्गदर्शन का सम्मान करने के स्थान पर सदैव उनका अपमान ही किया। और आज तो कुमार की उस प्रेयसी कनक रेखा ने महारानी को कुमार के विलास भवन से बाहर निकल जाने को कह दिया। और महारानी ने जब महाराज से शिकायत की तो सम्राट ने कनक रेखा को दंड देने के बजाय बड़े निसंग भाव से महारानी से कहा, प्रिय, कल सूर्योदय के बाद राजमहिषी बनने वाली कनक रेखा क्या आज से ही हमारे सम्मान स्नेह की अधिकारिणी नहीं हो सकती? अब तुम राज्य एवं शासन का मोह त्याग दो, जीवन इनसे कहीं महान है।
0: कहती जाओ चारुशीला, सब विस्तार से कहती जाओ। सम्राट के अंतःपुर की ऐसी कथाएं हम वनवासियों तक पहुंचती भी तो नहीं। और फिर जब कहानी हो भारत के पराक्रमी श्रेष्ठ सम्राट चंद्रगुप्त के अंतःपुर की, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती। तो फिर क्या हुआ?
1: क्या ये बात भी ठीक जान पड़ती है आपको कि एक निर्माता परम निर्मम होकर अपने निर्माण का इस प्रकार विध्वंस होते देखे? मौर्य वंश की ये दुर्गति देखकर क्या आपको तनिक भी संताप नहीं होता गुरुवर्य?
0: भावुक लड़की, वाचालता बंद कर। तू नहीं जानती कि तेरी भावुकता के आवरण के भीतर भी मैं देख सकता हूं। तू कुमार बिंदुसार से प्रेम करती है, और कुमार बिंदुसार वो कनक रेखा से प्रेम करते हैं। यहां मेरी इस कुटिया तक तेरी भाग दौड़ और साम्राज्य के प्रति तेरी स्वामी भक्ति का यही रहस्य है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, मूल रहस्य इससे भी गूढ़ है। उसे महारानी जानती हैं, तू नहीं जानती, स्वयं सम्राट भी नहीं जानते।
1: आचार्य, क्या उस रहस्य को मैं आज जान सकती हूं?
0: हां, वो तुम्हें जानना ही होगा, परंतु आज नहीं,

0: कल प्रातः तुम्हारी भाग्य लिपि का उद्घाटन होगा। या तो तुम सूर्योदय तक राजमहिषी बनोगी या फिर सदैव के लिए अपने भाग्य को कोसती रहोगी और सारे मौर्य वंश का भाग्य सो जाएगा।
1: साष्टांग प्रणाम करती हूं गुरुदेव, आदेश दीजिए अब मैं क्या करूं। मौर्य वंश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मैं अपने प्राणों के उत्सर्ग के लिए प्रस्तुत हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगी।
0: स्मरण रखो चारुशीले, मेरी इस कौटिल्य की राजनीति सत्य की राजनीति है। कौटिल्य ना तो मिथ्या कहता है और ना ही मिथ्या कहलवाता है। जो सत्य है, जो प्रखर यथार्थ है, उसे ही कौटिल्य देखता है और दिखाता है। सत्य से बड़ी और कोई शक्ति है क्या? हां, कौटिल्य सत्य के पक्ष में दुर्बलता सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य को अपनी संपूर्ण तेजस्विता में चमकते देखने का पक्षपाती है। और तुम ये स्मरण रखो कि सत्य को भी बुझी अग्नि की तरह उद्दीप्त करने की आवश्यकता होती है।
1: सत्य को, अंतरतम के सत्य को भी मैं नहीं छुपाऊंगी आचार्य। आपने मेरी जड़ता को आज झकझोर दिया है। आपके अनुग्रह के सामने मैं नतमस्तक हूं गुरुदेव।
0: चारुशीले, ये भी स्मरण रखो कि कौटिल्य किसी सामान्य व्यक्ति से ऐसी बातें नहीं करता है। वो आज मगध की भावी राजमहिषी को तुम्हारे भीतर देख रहा है। अब तुम जाओ चारुशीले, महारानी को आश्वस्त कर दो कि मैं प्रातः ही सम्राट के दर्शन करने आऊंगा।
1: आज्ञा दीजिए।
2: परम पराक्रमी महाराज चंद्रगुप्त की
3: जय।
2: परम पराक्रमी महाराज चंद्रगुप्त की
3: जय।
2: परम पराक्रमी महाराज चंद्रगुप्त की
3: जय।
1: सम्राट, अनर्थ हो गया, सर्वस्व नष्ट हो रहा है आचार्य। देव रक्षा कीजिए सम्राट की, मगध के साम्राज्य की।
4: जो क्या हुआ चारुशीला?
1: मंत्री राज राजकुमार बिंदुसार ने सेना का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लेकर पाटलिपुत्र को घेर लिया है। आज सम्राट बंदी है, हम सब बंदी हैं। मुख्य द्वार पर मुनिराज शांतिवर्धन सेना का संचालन कर रहे हैं। विद्रोही सैनिक राज प्रासाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
4: ओह, ये तो चिंतनीय है। लीजिए, महाराज भी आ गए। महाराज,
5: सुन लिया हमने। गुरुवर, आपका क्या विचार है?
0: इसीलिए तो कई महीनों बाद राज प्रासाद में आया हूँ पुत्री। प्रजा का कर्तव्य है कि विपत्ति काल में राजा के साथ रहे। सो संन्यास की कामना करने वाला ये बूढ़ा विष्णुगुप्त आज सम्राट के सम्मुख उपस्थित है। जो आज्ञा होगी पालन करूंगा।
5: आचार्य, गुरुदेव, मगध साम्राज्य के पितामह।
0: नहीं सम्राट, ये संबंध अब टूट गया। अब तो मुझे विष्णुगुप्त ही कहिए, कौटिल्य ही कहिए।
4: आचार्य देव, सम्राट के अपराध को क्षमा कीजिए भगवान। चारुशीला, आचार्य से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी बात अधिक मानते हैं। मगध के इस आसन्न पतन को तुम ही रोक सकती हो।
0: सत्य कहते हो राक्षस, मगध की भावी रक्षा चारुशीला ही कर सकती है।
5: चारुशीला, ये तुच्छ दासी राज्य की रक्षा करेगी? मैं समझा नहीं।
0: हाँ महाराज, चारुशीला ही रक्षा करेगी। आज मैं कौटिल्य एक अत्यंत

0: प्रिय अध्याय का उद्घाटन कर रहा हूं। सम्राट, ये चारुशीला महारानी की प्रिय दासी नहीं, अंगराज की वही देश विश्रुत सुंदरी कन्या वसुमती है, जिसके वरण के लिए इस विशाल देश का प्रत्येक राजकुमार प्राणोत्सर्ग करने को आतुर रहता था। राजमहिषी ने मेरी योजना के अनुसार राजकुमार बिंदुसार को गुप्त वेश में अंक प्रदेश भेजा। वसुमती मन ही मन बिंदुसार के पराक्रम पर मुग्ध थी। दोनों ने अंगराज के उद्यान में गांधर्व विवाह कर लिया और गुप्त वेश में ही पाटलिपुत्र आ गए।
1: क्या धन्य गुरुदेव, चंद्रगुप्त अपने असंयम के लिए फिर क्षमा मांगता है। आज से अंग और मगध मैत्री के अटूट सूत्र में बंध गए।
0: ये कनक रेखा यूनानियों की गुप्तचर है, उसी के सम्मोहन में आकर बिंदुसार ने वसुमती का परित्याग किया और आज उसी की योजना के अनुसार पाटलिपुत्र विद्रोहियों के हाथ में जा रहा है। राजा के मार्ग भूलने पर आज प्रजा ने अपनी रक्षा स्वयं अपने हाथों में ले ली है।
1: नहीं आचार्य, मेरे भुजाओं में अब भी बल शेष है। मैं स्वयं बिंदुसार को अपने खड्ग का लक्ष्य बनाऊंगा।
0: नहीं सम्राट, आपको यह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना। एक दो घड़ी में ही सभी विद्रोही आपके न्याय के सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। बिंदुसार ने जब यह घोषणा कर दी कि महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं, तो महारानी स्वयं राज छत्र पहनकर प्रजा का नेतृत्व करने निकल पड़ी। आदर्शों की रक्षा के लिए माता पुत्र के इस प्राणांतक संघर्ष की भी आवश्यकता पड़ ही गई। महाराज,
1: महारानी स्वयं राज छत्र पहनकर प्रजा का नेतृत्व करने निकल पड़ी।
2: राजमहिषी वसुमती की जय। राजमहिषी वसुमती की जय।
0: फिर जो कुछ हुआ सम्राट, वो अत्यंत करुण काव्य है। बिंदुसार की तलवार से महारानी का वध हो गया है।
1: क्या देवी, मगध की राजमाता का वध हो गया पुत्र के हाथ? मेरे हृदय की सम्राज्ञी का वध।

0: महाराज की मूर्छा अब टूट गई है।
1: महामात्य राक्षस वो देखो, चारुशीला आ गई। देख रहे हो, बिंदुसार को बंदी बनाकर लाई है वो। क्या वेश है महामात्य, प्रणाम करो इस कुल देवी को।
2: आचार्य, महामंत्री राक्षस, मुझे सहारा दीजिए। मैं मगध साम्राज्य की इस कुल वधु को हृदय से लगाना चाहता हूं।
3: आचार्य देव, विद्रोहियों के लिए दंड विधान कीजिए। मौर्य वंश कुलांगार बिंदुसार ने राजद्रोह का जघन्य अपराध किया है।
1: नहीं राक्षस, राजद्रोह का ही नहीं, उसने कौटिल्य के वध का भी षड्यंत्र किया था। रात के अंतिम प्रहर में कौटिल्य की पर्णकुटी जला दी गई। मैं तो बच गया, परंतु मेरा एकमात्र पुत्र उस कुटी में जलकर भस्म हो गया।
2: आपका पुत्र?
1: आपका पुत्र? हां सम्राट, मेरा पुत्र। बिंदुसार को सब ज्ञात है,

0: सम्राट, आज मैं यही कहने यहां आया हूं, मेरे साथ न्याय कीजिए। मुझे मेरे पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। मैं भी मगध राज्य की प्रजा हूं महाराज।
1: हे ईश्वर, ये सब क्या घट रहा है? बिंदुसार, क्या वास्तव में इस जघन्य अपराध में तेरा कुछ हाथ है? अपनी स्थिति स्पष्ट कर कुलंगार।
2: मैंने आचार्य का सर्वस्व नष्ट किया है। मगध को एक भीषण षड्यंत्र से बचाने के लिए आचार्य ने एक रात कनक रेखा के प्रेम को स्वीकार किया और इस प्रकार यूनानियों की समस्त योजनाएं प्राप्त कर ली। मैं मूढ़ बना अपने ही कुल के विनाश में सहयोग देता रहा, किंतु जब कनक रेखा को आचार्य का यहां सफलता न मिली तो उसने मुझे अपनी शतरंज का पासा बनाया और मैं मतिमंद विलास में डूबा अपनी ही जड़े खोदता रहा। मुझे उसने विश्वास दिला दिया कि वो जो कुछ कर रही है मेरे हित के लिए ही कर रही है। आचार्य कौटिल्य ने इस रहस्य उद्घाटन के लिए समय की प्रतीक्षा की और आज वो समय आ गया। परम उपेक्षित होते हुए भी उन्होंने आज मगध को विदेशी दासत्व से बचाया है।
3: और तुमने बिंदुसार, तुमने मौर्य कुल की कीर्ति गाथा में कौन सा सहयोग दिया?
2: महामंत्री राक्षस, मौर्य कुल की यशो गाथा को मैंने कलंकित अवश्य किया है, किंतु भागीरथी पुण्य सलिला गंगा क्या कभी मनुष्यों के पाप से अपवित्र हुई हैं? मेरे लिए शीघ्र दंड की आज्ञा कीजिए महामंत्री।
0: सम्राट चंद्रगुप्त, कुमार बिंदुसार को मुक्त कर दीजिए और राज्य आरोहण के समारोह को निश्चित मुहूर्त में संपन्न कीजिए। बिंदुसार को दंड देने से मौर्य कुल का एकमात्र दीपक भी बुझ जाएगा। महामंत्री, आप घोषित कर दीजिए कि आज से मगधपति बिंदुसार हैं, राजमहिषी वसुमति हैं और राज्य का उत्तराधिकारी चिरंजीव राजकुमार महेश है।
1: और महामंत्री, इस बूढ़े सम्राट चंद्रगुप्त की इस आज्ञा को भी घोषित कीजिए कि बिंदुसार आचार्य कौटिल्य के चरणों में रहकर राज्य संचालन करेंगे।
0: नहीं सम्राट, नहीं, नहीं। मैं फिर इस मृग मरीचिका में फंस जाऊंगा। मैं भी तो मनुष्य हूं सम्राट, मेरे भीतर भी तो स्नेह की अजस्र सरिता हिलोरे ले रही है। मैंने तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार किया है चंद्र, प्राणों से भी अधिक प्यार किया है, परंतु नहीं, अब और नहीं चंद्र, अब और नहीं। मैं अब हिमालय की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं।
1: तो आचार्य, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लोक सुधारा, अब मेरा परलोक भी सुधारिए दे।
0: नहीं नहीं, ये नहीं होगा चंद्रगुप्त, नहीं होगा। मोह को त्यागो चंद्र, त्यागो इस मोह को। कौटिल्य आज विदा मांग रहा है, राक्षस तुमसे भी, बिंदुसार और वसुमति तुम दोनों से भी। मौर्य कीर्ति अमर हो चंद्रगुप्त।

कौटिल्य का संन्यास। अभी आप रतनलाल जोशी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। कौटिल्य की भूमिका में थे राजेश काम्बोज, राक्षस सुनील लोहिया, चंद्रगुप्त अशोक मलकानी, बिंदुसार किशोर सहजानी और चारुशीला की भूमिका में थी सुनीता शाहबादी। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर

एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन के रूप में हिस्सा ले रही हैं। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सिलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं गीत फिल्म बातों बातों में से। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, और गीत के बाद ठीक 3:30 से सुनिएगा प्रोग्राम रेडियो किड्स।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए,
2: सुनिए, कहिए, कहिए ना।

0: किया था वादा तो आ गए हम। प्रस्तुत है एपिसोड 2 और आइए चलते हैं आज के सफर रेडियो किड्स पर। शुरुआत करते हैं रोमांचक मनोरंजन की।
1: मैं वंश दलाल और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त।
2: मैं काशवी आहूजा।
0: मैं आशना पुरी।
3: मैं शिवांश राय।
4: मैं रिद्या शाह।
5: मैं सौम्या सिंह।
6: मैं राध्या शर्मा।
7: मैं निविता छेत्री।
8: मेरा नाम तुषार अत्री है।
9: मैं लक्षिता शर्मा।
10: मैं अनाया जैन।
11: मैं सौम्या।
12: मेरा नाम काविड शर्मा है।
13: मेरा नाम अयान जैन है।
14: मेरा नाम चिराग गुप्ता है।
15: मेरा नाम आर्यन कुमार है।
16: मेरा नाम अतिक्ष राजपूत है।
17: मेरा नाम खुशी शर्मा है।
18: मेरा नाम अव्युक्त अग्रवाल है।
19: मेरा नाम अंशपाल है।
2: आज हम आपको बताएंगे उस महान बल की कहानी जिसका नाम हम गर्व से अपने स्कूल के साथ जोड़ते हैं।
0: रिद्या, क्या तुम्हें पता है कि जिसे आज हम CRPF कहते हैं उसका जन्म आजादी से पहले ही हो गया था। 27 जुलाई 1939 को इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में निमंच में बनाया गया था।
4: सही कहा नव्यता। आजादी के बाद हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया, यानी इस फोर्स की नींव में ही एकता और अनुशासन का पत्थर लगा है।
0: दोस्तों, एक और अमेजिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली ऑल वुमेन पैरामेडिकल बटालियन, महिला बटालियन भी CRPF ने ही बनाई थी। 1986 में इसकी शुरुआत हुई और आज हमारी महिला अधिकारी पूरी दुनिया में शांति और संदेश दे रही।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, जब 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था तब सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी जी ने अपनी जान पर खेलकर आतंकियों को रोका था। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
1: वाकई सौम्या, हम ऐसे वीर जवानों की छत्र छाया में शिक्षा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। चाहे वो लद्दाख की कड़ाके की ठंड हो या जंगलों की गर्मी, सीआरपीएफ जवान हमेशा तेज यशस्वी के मंत्र के साथ खड़े हैं।
2: बातें तो बहुत सारी हो गई, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे प्रस्तुत किया है हमारे स्कूल के सीआरपीएफ मेलोडियस कोर ग्रुप ने।

0: योगा कर्मशु कौशलम। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कर्मों में निपुणता होना, चाहे होमवर्क हो, स्पीच हो, स्पोर्ट्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मस्ती। काम का साइज नहीं, काम की क्वालिटी मैटर करती है। यही हमारा मोटो है, हमें सिखाता है कंसिस्टेंसी डेली हैबिट से बनती है। क्यों अनाया?
1: हाँ, ऐसे ही हम CRPF स्कूल के छात्र ना ही केवल शौर्य और साहस से भरे हैं, बल्कि हम शौर्य और साहस को जगाना भी जानते हैं। तो अब हमारे अंदर के राम, हमारे अंदर के पुरुषार्थ को जगाने के लिए आ रहे हैं वंश।
2: सादर अभिवादन, मैं वंश दलाल आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी रचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो केवल शब्द नहीं बल्कि हर भारतीय की सोई हुई चेतना को झकझोर देने वाला शंखनाद है। आदरणीय आशुतोष राणा जी की लेखनी से निकली यह कविता हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और संकल्प छिपा है। तो आइए इस वीर रस की धारा में डूबते हैं। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कन कन पहने है वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे, अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धर कर जागो, रक्त के भक्त लाड लो, जागो सिर के

सौदागर, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नर मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शीश न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, छोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, जागे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून साहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, और दो दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, कलवा है का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी और राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, कौन बापू, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वो फौजे सात समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लुट्टी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, इस भारत की संतान जगे, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, अरे इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, मैं हर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, ए भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।

0: बताओ सौम्या, तुम क्या बताना चाहती हो?
1: मैं सौम्या और मेरी मित्र सौम्या सिंह फ्रॉम CRPF पब्लिक स्कूल आपको आज एक सफर पर लेके जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया।
2: बिल्कुल सही कहा। आज बात हो रही है एशिया के ज्योतिपुंज यानी महात्मा बुद्ध की।
1: दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया के हर सुख सुविधा, महल, नौकर चाकर और सुख ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही सवाल, दुनिया में दुख क्यों है?
2: और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने आधी रात को अपने परिवार और राजपाट को छोड़ दिया। सालों की तपस्या के बाद बिहार के गया में एक वट के पेड़ के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए।
1: बुद्ध ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की, ना ही बहुत अधिक विलासिता और ना ही बहुत अधिक क्रूरता।
2: आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में बुद्ध की शिक्षाएं और भी जरूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हमारा मन शांत हो तो हमारे चारों ओर की दुनिया भी शांत होगी।
1: दोस्तों, हम CRPF स्कूल के छात्र होने के नाते यह समझते हैं कि अनुशासन और शक्ति जरूरी है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि उस शक्ति का उपयोग शांति और करुणा के लिए होना चाहिए।
3: अब समय है एक शांतिमय और मन को सुकून देने वाली प्रस्तुति का। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं CRPF पब्लिक स्कूल रोहिणी क्वायर, मधुर स्वरों में बुद्धम शरणम गच्छामि गीत।

0: दोस्तों, जब मंजिल बड़ी हो, साथ देने वाला कोई ना मिले, तो अक्सर हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसे में याद आता है रविंद्रनाथ जी का, ज्योति तुरे दाक्षिणी क्यों नाशे, तो वे अकला चलो रे।
1: क्या आप जानते हैं, यह गीत महात्मा गांधी के दिल के सबसे करीब था। साल 1947 के मुश्किल दौर में, जब चारों ओर अंधेरा था, तब गांधी जी ने इस गीत को अपना सहारा बनाया और अकेले चलने का साहस दिखाया।
2: दिलचस्प बात यह है कि इस गीत का संदेश आज भी उतना ही ताजा है, चाहे वो AR रहमान का म्यूजिक हो या आज के स्टार्टअप का संघर्ष। यह गीत हमें सिखाता है कि अगर आपका रास्ता सही हो तो भीड़ का इंतजार मत कीजिए। तो अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि इतिहास अकेले चलने वाले ही रचते हैं। मैं हूँ रिद्या, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि जोश हाई है।
3: ऐसे ही 8 जून 1936 को आकाशवाणी की शुरुआत हुई और फिर कोई भी सफर अकेला नहीं रहा।
4: अब एक और गीत सुनते हैं, एकला चालो, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं तुषार अत्री, खुशी शर्मा।

मैं वंश दलाल अब बात करूंगा भारत की आजादी पर। भारत की आजादी के लिए नरम दल के क्रांतिकारियों ने जहां अनशन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन किए, वही गर्म दल ने अंग्रेजों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा था। गर्म दल का नाम सुनते ही आंखों के सामने बिस्मिल, अशफाक, भगत सिंह और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों का चेहरा आ जाता है और याद आता है ये गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें लगता है कि ये शब्द महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे, क्योंकि उन्होंने ही इसे फांसी के तख्त तक मशहूर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं? असल में ये गजल राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं लिखी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। इस कालजयी गजल को साल 1921 में पटना के एक शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। उनका असली नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। उन्होंने ये गजल उस वक्त के असहयोग आंदोलन के जोश में लिखी थी, जब राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे काकोरी कांड के बाद जेल की सलाखों के पीछे और अदालत जाते समय गाया तो ये देश की धड़कन बन गई। अजीब इत्तेफाक देखिए, लिखने वाले का नाम भी बिस्मिल और अमर करने वाले का नाम भी बिस्मिल। तो अगली बार जब आप ये लाइन गुनगुनाए तो पटना के उस शायर और वतन के उन मतवालों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने इस शब्द को शोला बना दिया। बने रहिए हमारे साथ। अब ये खूबसूरत गजल लेकर आ रहे हैं तुषार अत्री, आर्यन कुमार, काविर शर्मा और अतिक्ष राजपूत।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फिल्म कारवां से गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में, और ठीक 4 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमरीका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से एक है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी गई है जाएगी।

0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन क्वांटम एआई नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपए की आमदनी का वादा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 39 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Dr. Jaishankar said India and the U.S. share a comprehensive global strategic partnership with deep and broad-based cooperation. He also highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Secretary and I therefore welcomed the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities.
2: In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Dibangshu Pangda has secured a massive lead in 19th round of counting of votes for the repolling on Falta Assembly seat. Counting is underway at Diamond Harbour Women's University. Dibangshu Pangda of BJP was leading by 99,433 votes when the reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India, Marxist, was in second position, followed by Abdul Razak Mola of Indian National Congress, while Jahangir Khan of the All India Trinamool Congress was in fourth position. The counting is being conducted across 14 tables and will span a total of 21 rounds of the Falta constituency. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to the Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or travelling to these countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has issued an update regarding the Class 12th post-result process after technical issues on 21st and 22nd of this month led to incorrect fee deductions in some cases. In a statement, CBSE said that the issue occurred during applications for scanned copies of evaluated answer books. It added that in some instances, excess payment was deducted, while in others, lesser amounts were charged. Prime Minister Narendra Modi today shared an article by Union Minister Jyotiraditya Sindhya highlighting how the five treasures of Khangchen Zonga continue to illuminate Sikkim's journey.

0: ms.edu.in. The Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi in 1920, has invited online applications for the post of a finance officer on a 5-year tenure basis. The post carries pay level 14. The university is seeking experienced and institution-oriented professionals with strong administrative and financial management expertise. The printed application form must reach the registrar, Gujarat Vidyapeeth, Ashram Marg, Ahmedabad, by 29th May 2026. Detailed eligibility conditions, qualifications and application guidelines available on the university's website. Do refer to www.gujaratvidyapeeth.org. And now we have the employment news in Hindi.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर, यूजीसी पात्रता मानदंड यूजीसी अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से बीबीए, वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, उड़िया और राजनीति विज्ञान विभागों में सहायक प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद है सहायक प्रोफेसर का, बीबीए विभाग है, यहाँ पर 3 रिक्ति है, वाणिज्य में 3 रिक्ति हैं, साइबर सुरक्षा में 2 स्थान रिक्त हैं, अर्थशास्त्र में 3 स्थान रिक्त हैं, अंग्रेजी में 3 स्थान रिक्त हैं, इतिहास में 3 स्थान, उड़िया में 3, राजनीति विज्ञान में 3, कुल मिलाकर 23 रिक्तियां हैं। पूर्ण आवेदन आप ऑनलाइन भर सकते हैं। हार्ड कॉपी पोस्ट करने के लिए आपको हम पता बता दें, कुल सचिव ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय @ बड़सिंघारी PO गौशाला चौक संबलपुर, पिन संख्या 768024 ओडिशा, 22 जून 2026 5:30 बजे शाम तक पहुंच जाना चाहिए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के 24/7 संकट नियंत्रण कक्ष में संविदा के आधार पर 4 अनुसंधान सहयोगियों की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के 24/7 संकट नियंत्रण कक्ष CCR में अनुसंधान सहयोगी के 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों को मंत्रालय के दिनांक 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अनुसंधान सहयोगी को ₹40,000 प्रतिमाह समेकित मानदेय देय होगा। और इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर लें www.moef.nic.in। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है इस विज्ञापन के प्रसारण के 21 दिनों के अंदर। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए SC ST NC OBC EWS PWBD इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है। सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए। गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं, निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। मानव संसाधन अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी 1 ही है, 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत 1 स्थान यहाँ पर रिक्त है, 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है। सहायक सिस्टम विश्लेषक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, 1 स्थान रिक्त है 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां यहां पर भी 1 है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, 1 स्थान रिक्त है।

0: और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं। एक स्थान रिक्त है 35 वर्ष, इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो हैं उसकी जानकारी आपको दें, अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं। कुल रिक्तियां हैं 1, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां 1 हैं और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां 1 हैं, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है, www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारियां ले सकते। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा, गुड इवनिंग एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड लाइक करिश्मा मेंशन्ड, वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच more, all these over the next 30 minutes. Let's begin our news magazine program with the news headlines first. India and the United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार में से एक बताया।
2: बीजेपी कैंडिडेट दिबांशु पांडा सिक्योर्स मैसिव लीड इन वेस्ट बंगाल्स फलता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रीपोलिंग।
1: सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी।
2: 24 पीपल किल्ड इन अ ब्लास्ट नियर रेलवे ट्रैक इन क्वेटा इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस।
1: और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू।
2: And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about jaggery, India's traditional superfood sweetener. Jaggery, or as we lovingly call it, gud, has always held a special place in Indian homes, isn't it? A small piece of jaggery after a meal, or grandmothers adding it to winter laddus, and the aroma of gud melting into homemade sweets during Diwali or Holi or any other festive season. These are moments many Indians have grown up with.
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह साधारण सा मीठा पदार्थ न केवल हमारी रसोई में बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया है, क्योंकि गुड़ सिर्फ एक पारंपरिक सामग्री से कहीं बढ़कर है। यह संस्कृति, आजीविका और दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव की एक कहानी है। आज भारत दुनिया के 70% से ज्यादा गुड़ का उत्पादन करता है। जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में कि दुनिया भर में बनने वाला कुल गुड़ में से ज्यादातर हिस्सा भारत के खेतों, भारत के किसानों और भारत के गांव से आता है।
2: एब्सोल्यूटली, नियरली 2.5 मिलियन लाइवलीहुड्स इन इंडिया आर कनेक्टेड टू जैगरी प्रोडक्शन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट एट अ टाइम व्हेन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, मेनी आर स्लोली टर्निंग अवे फ्रॉम हेविली रिफाइंड शुगर एंड लुकिंग फॉर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स, एंड सडनली जैगरी, समथिंग इंडियन households have trusted for centuries, is gaining global attention.
1: बिल्कुल, और पिछले एक दशक में भारतीय गुड़ का निर्यात दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। अमेरिका, इंडोनेशिया, यूएई, नाइजीरिया और नेपाल जैसे देश भारतीय गुड़ का आयात बढ़ती मात्रा में कर रहे हैं। तो आखिर गुड़ में ऐसी क्या खासियत है, अब इसे भी समझना जरूरी है। रिफाइंड चीनी के विपरीत गुड़ बिना किसी भारी केमिकल प्रोसेसिंग के बनाया जाता है। गन्ने के रस को धीरे धीरे उबाला और गाढ़ा किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद कई प्राकृतिक खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे औषधीय चीनी भी कहते हैं।
2: एब्सोल्यूटली ट्रू, इन मेनी इंडियन होम्स गुड़ वॉज नेवर सीन एज ओनली अ स्वीट ट्रीट, अ चाइल्ड रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल माइट रिसीव इट विद रोस्टेड चना, व्हाइल लेबरर्स ऑफन एट इट ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग्स फॉर सस्टेन्ड एनर्जी। दीज कस्टम्स रिफ्लेक्टेड जनरेशन्स ऑफ practical wisdom and experience. And jaggery contains iron, potassium, magnesium, calcium and several micronutrients that are mostly lost when white sugar is heavily refined. In fact, iron-rich jaggery has been long used in many homes to help improve hemoglobin levels.
1: और तन्वी शायद यही वजह है कि बचपन से भी हमने भी सुनी होगी और कई भारतीयों ने सुनी होगी कि खांसी हो तो गुड़ खा लो, ठंड में गुड़ अच्छा होता है। सदियों से आयुर्वेद गुड़ को पाचन श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत और शरीर की सफाई करने वाले गुड़ों से जोड़ता आया है। अब आधुनिक उपभोक्ता उस पारंपरिक ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं जो पहले से ही ज्ञात था।
2: राइट, बट द स्टोरी ऑफ जागरी बिकम्स इवन मोर फैसिनेटिंग व्हेन वी लुक एट इट्स रूट्स। Do you know that the word sugar itself comes from the Sanskrit word sarkar? It's India's connection with sugarcane and jaggery goes back thousands of years all the way to the Vedic period. Historical accounts even mention that in 647 AD, a Chinese mission traveled to India to learn sugar processing techniques.
1: तो कई मायनों में हम कह सकते हैं कि गुड़ सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, यह भारत की सभ्यतागत यादों का एक हिस्सा है और आज यह पुरानी परंपरा एक आधुनिक ग्रामीण उद्यम का रूप ले रही है। तमिलनाडु के एक किसान मुरलीधरन का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो आम गन्ने को बेचने की बजाय उन्होंने ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर बनाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी और उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट आसपास के राज्यों और यहां तक कि विदेश बाजारों तक पहुंचने लगा है। आखिर क्या बदला? वैल्यू एडिशन। उनका ऑर्गेनिक गुड़ अब आम गुड़ के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचे दाम पर बिकता है, जिससे उनके परिवार, उनके साथ काम करने वालों के लिए कमाई के बेहतर मौके भी पैदा हो रहे हैं।
2: One thoughtful shift transformed a traditional activity into a profitable business. And this is exactly where government initiatives are stepping in. Schemes like Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme and One District, One Product are helping strengthen food processing infrastructure, support small enterprises and improve branding and also marketing. Thousands of jaggery-based micro food processing units have already received support. Because when rural products receive better technology, better packaging and better market access, entire local economies begin to grow.
1: और इसी कहानी का एक और भी खूबसूरत पहलू है तमिलनाडु के पोषण कार्यक्रमों में बच्चों और परिवारों को दिए जाने वाले सप्लीमेंट फूड मिक्स में गुड़ भी शामिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, इसका मतलब है जिंदगी को पोषित करना। और कभी कभी पारंपरिक खाद्य पदार्थों में ठीक वैसे ही पोषण संबंधी समझ छिपी होती है जिसे आज के आधुनिक सिस्टम फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: इवन इंडियाज जीआई टैग्ड जैगरी वैरायटीज टेल स्टोरीज ऑफ रीजनल प्राइड। कोल्हापुर जैगरी फ्रॉम महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स गोल्डन कलर एंड स्वीटनेस एंड मुजफ्फरनगर गुड़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड।
1: और केरलम का मरायूर गुड़ अपनी शुद्धता और बनाने के पारंपरिक तरीकों के लिए मशहूर है। हर इलाका इसमें अपना एक खास स्वाद, बनावट और पहचान जोड़ देता है। इसलिए अगली बार जब हम खाने के साथ गुड़ का कोई छोटा सा टुकड़ा देखें तो हमें याद दिला सकता है कि इसकी मिठास के पीछे उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ है जितना हम अक्सर समझ पाते हैं।
2: There are fields and farmers behind it, generations of knowledge, livelihoods connected to it, and a tradition that continues to travel across the world. Because the sweetest stories are often the ones that quietly stay with us for years. And now we have an important announcement. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at Civil Investiture Ceremony tomorrow. On this occasion, we are broadcasting 16 programs as part of our series People's Padma on Akashwani. In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. These episodes are being broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashwani Gold. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. So stay tuned to Akashwani today and tomorrow.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और सबसे पहले बात पणजी की करेंगे। मोर मुगाव पोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में पणजी में एमपीए एक्सीलेंस अवार्ड 2026 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया था। साथ ही कार्गो हैंडलिंग, परिचालन दक्षता और हरित पहलों में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया था। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: Mormugao Port Authority recorded strong growth during the financial year 2025-26 with increases in dry bulk, miscellaneous cargo and fertilizer handling. Operational efficiency also improved with the reduced turnaround time and higher ship berth output. Port posted its best financial performance in 5 years, recording an operating income of nearly 593 crore rupees and an operating surplus of over 285 crore rupees. Speaking on sustainability initiatives and future expansion plans, Deputy Chairperson of Mormugao Port Authority, Vinayaka Rao said,
4: Today we are 100% solar powered port. I can say solar powered port except the PPP terminals. Requirement of the port is completely met with this 3 megawatt solar plant. We generate about 45 lakh units per annum and our consumption is less than this. We require a lot of water for our dust suppression measures. So fresh, at times we used to use the STP water and also fresh water. Now we have laid a pipeline of 1.8 kilometers from Baina to the port. The treated water is being used for dust suppression measures for all the terminals at MPA.
3: Officials at the event also highlighted the strong coordination between the port, customs and railway sectors, which contributed to improved cargo handling and operational growth during the year. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
2: The Water Resources Department in the Delta region of Tamil Nadu aims to complete desilting work by this month end. More on this from our correspondent.
5: A race against time in the Cauvery Delta region as water management officials push to wrap up a massive 100 crore rupees infrastructure project ahead of monsoon season. The Water Resources Department reports it has successfully completed nearly 80% of its special desilting work across 12 districts in the Trichy region. The ambitious project, which kicked off well ahead of schedule back in March, covers a massive 4,972 kilometers of canals and rivers out of nearly 960 individual projects sanctioned, over 760 are already wrapped up. The department is firmly on track to finish the remaining sections by the end of May, with only a minor spillover expected into the first week of June if necessary. To cross the finish line, officials have recently doubled the number of heavy machines deployed on the ground, focusing heavily on notorious choke points that have historically caused severe waterlogging. Tanjavur district is receiving the lion's share of the funding, with over 27 crore rupees allocated for 310 individual projects. Thiruvarur follows with 17.4 crore rupees, while Trichy district is already boasting a 95% completion rate on its

0: मेघालय सरकार के कृषि विभाग के पूर्व निदेशक कैनिंग एस शाबोंग ने कहा कि किसान बाजार किसान मिशन की पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष विपणन के क्षेत्र में। इसके माध्यम से किसान बिचौलियों को दरकिनार कर सकते हैं और इस तरह अपनी उपज का बेहतर हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। यह किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी ताजे कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करने वाला एक मंच है।
1: Farmers from Khasi Hills and Jaintia Hills also showcased their produce at the farmers' market.
0: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
1: इन आईपीएल क्रिकेट राजस्थान रॉयल्स वर 119 फॉर 5 इन 13 ओवर्स अगेंस्ट होस्ट्स मुंबई इंडियंस एट वानखेड़े स्टेडियम व्हेन द रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। अर्लियर मुंबई इंडियंस वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बॉल। In another fixture to be held later this evening, hosts Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m.
0: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था।
3: केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे।
2: करतार सिंह का गाँव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे।
3: अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमरीकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगोन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था।
2: गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया।
3: जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए।
2: भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
3: लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है। उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई।
2: करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
1: एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द Tapan Chatterjee. It is his death anniversary. A Bengali actor who played several roles in Satyajit Ray's films, notably as Gopi Gaine in Gopi Gaine Bagha Baine, that came in 1968, and also its sequels Hirak Rajar Deshe, that was in 1980, and also in 1992 he played a character in Gopi Bagha Fere Elo. And moving on towards our next personality, we're talking about Nicola Copernicus. Today is his death anniversary, a Renaissance polymath who formulated a model of the universe that placed the sun rather than earth at its center. The publication of Copernicus's model in his book titled On the Revolutions of the Celestial Spheres just before his death in 1543 was a major event in the history of science, triggering the Copernican Revolution and making a pioneering contribution to the scientific revolution. A polyglot and a polymath, he obtained a doctorate in canon law and was a mathematician, astronomer, physician, classics scholar, translator, governor, diplomat, and also economist. From 1497, he was a Wormian cathedral chapter canon. In 1517, he derived a quantity theory of money, a key concept in economics, and in 1519, he formulated an economic principle that later came to be called as Gresham's Law.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी की पुण्यतिथि है, उन्हें याद कर रहे हैं। वे हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों और उर्दू शायरों में गिने जाते थे। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में हजारों गीत लिखे जिन्हें श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान मिला। उनकी रचनाओं में प्रेम, संवेदना और सामाजिक भावनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता था। उन्होंने नौशाद, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, लक्ष्मी कांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया और उनके लिखे हुए कई गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। तो आइए सुनते हैं उनका ही लिखा ये संगीत।

0: हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, इसके साथ ही आज हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल का भी जन्मदिन मना रहे हैं। बिछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर इतिहास रच दिया था। इस उपलब्धि के साथ ही वे एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी सफलता ने देश की अनेक महिलाओं और युवाओं को साहसिक खेलों के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कई पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व भी किया और युवाओं को साहसिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण भी दिया। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया।
1: And we are talking about today Bob Dylan. It's his birthday, and an American singer-songwriter described as one of the greatest songwriters of all time, Bob Dylan has been a major figure in popular culture over his 69-year career. With an estimated 125 million records sold worldwide, he's one of the best-selling musicians. He added increasingly sophisticated lyrical techniques to the folk music of the early 1960s, infusing it with the intellectualism of classical literature and also poetry. His lyrics incorporated political, social and philosophical influences, defying pop music conventions and appealing to the bourgeois counterculture. So let's enjoy one of his classics titled Blowing in the Wind.

0: उनके संगीत की विशेषता मधुर धुने, भावपूर्ण गीत और आधुनिकता तथा भारतीय संगीत का सुंदर समन्वय रहा। उनके कई गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। चला है आपसे अनुमति लेने का, तो हमें इजाजत दीजिए करिश्मा राय और तन्वी खुराना को। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
3: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
4: These would be the principles with which we would approach that region.
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
5: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
2: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक

0: वोट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म अन्नदाता से किशोरदा के स्वर में गीत, और गीत के बाद ठीक 5:30 पर सुनिएगा पूर्वोत्तर डायरी।

0: के हर पल।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूर्वोत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में बीते दिनों एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का समापन हुआ। 3 दिन तक चली इस कार्यशाला में पूर्वोत्तर भारत में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने को लेकर विचार विमर्श हुआ और भारत भी पाम ऑयल और वनस्पति खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है कि हर राज्य वनस्पति खाद्य तेल के उत्पादन में अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाए। पूर्वोत्तर भारत में भी अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में आयोजित हुई इस कार्यशाला में सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य इकट्ठे हुए और उन्होंने खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन को लेकर रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया। तो आइए हमारे संवाददाता मनोज की इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं इस कार्यशाला के प्रमुख निष्कर्षों के बारे में।
3: अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में स्थित पासीघाट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती के तीव्र विस्तार के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना और केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप वनस्पति तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना था। इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों में ऑयल पाम की खेती से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की और ऑयल पाम की खेती तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में मौजूद अवसरों एवं चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यशाला का संयुक्त आयोजन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ICAR, IIOPR, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
2: अरुणाचल प्रदेश से अब हम चलते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम में तकनीक की सहायता से कई रोचक समाधान निकाले जा रहे हैं। हाल ही में 2 महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशंस की शुरुआत हुई है। लेबर लिंक नाम की इस एक ऐप से मिजोरम में श्रमिकों को काम दिलवाने में सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। दूसरी तरफ बोलने में असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए एक और खास ऐप की भी शुरुआत हुई है। ये 2 मोबाइल ऐप किस तरह से मिजोरम में समाधान तलाशने में मदद कर रही है, आइए एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमारे सहयोगी उत्पल ने तैयार की है।
4: मिजोरम अब लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक को तेजी से अपना रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और बच्चों को अपनी बात कहने में भी मदद मिल रही है। डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मिजोरम सरकार ने मिजोरम लेबर लिंक नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता

0: विभाग ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य दिहाड़ी श्रमिकों को सीधे काम देने वालों से जोड़ना है। पहले कई श्रमिकों को काम पाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर इंतजार करना पड़ता था और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उन्हें कम मजदूरी और असुरक्षित काम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। अब इस नए ऐप के जरिए श्रमिक डिजिटल तरीके से अपना पंजीकरण कर सकते हैं, अपनी योग्यता और स्थान के अनुसार काम खोज सकते हैं और काम से जुड़ी जानकारी सीधे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने, काम में पारदर्शिता बढ़ाने, खासकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को समान रोजगार अवसर देने में मदद करेगी। ये ऐप राज्य सरकार की तेज, सुरक्षित और तकनीक आधारित सेवाओं की व्यापक योजना का भी हिस्सा है। इसी बीच मिजोरम की तकनीक से जुड़ी एक और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। एक मिजो टीम ने माय फर्स्ट वॉयस नाम का एआई आधारित ऐप विकसित किया है, जो बोल नहीं पाने वाले बच्चों को संवाद करने में मदद करता है। ये ऐप बच्चों की आवाज, गुनगुनाहट और हल्की ध्वनियों का विश्लेषण करता है और परिवार की आवाज तथा स्थानीय भाषा के उच्चारण के साथ मिलाकर एक स्वाभाविक आवाज तैयार करता है। इस परियोजना को मीडिया मॉनक्स इंडिया और सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव का सहयोग मिला है। इस तकनीक की मदद से कई बच्चे अब अपनी जरूरतें बता पा रहे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं और पहली बार कविता भी सुना पाए हैं। माता पिता का कहना है कि इस तकनीक से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार के साथ अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। मिजो नव प्रवर्तक जॉन वी पैटे द्वारा तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट को हाल ही में वैश्विक पहचान मिली, जब इसे वर्ष 2026 में वेबी पीपल्स वॉयस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: श्रोताओं, नागालैंड की प्रीमियम कॉफी देश दुनिया में अपनी खुशबू और अपने स्वाद के लिए मशहूर होती जा रही है और नागालैंड की इस कॉफी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एक विशेष परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत नागालैंड में कॉफी की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, कॉफी की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से इस खास परियोजना का उद्घाटन किया। तो आइए कोहिमा से हमारी संवाददाता असुनो से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: नागालैंड की धुंध से ढकी पहाड़ियों से अब एक नई खुशबू और नए अवसरों की शुरुआत हो रही है। किसानों की मेहनत और राज्य की उपजाऊ मिट्टी से जुड़ी ये पहल अब वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर ने मिशन कॉफी ऑफ नागालैंड और क्लस्टर आधारित कॉफी वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नागालैंड नामक पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना पर 175 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नागालैंड में कॉफी की खेती से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पर्यटन और निर्यात तक पूरी कॉफी वैल्यू चेन विकसित करना है। इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ 18 मई को नई दिल्ली से केंद्रीय डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस दौरान नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारी, नागालैंड सरकार के प्रतिनिधि, किसान, उद्यमी और अन्य हितधारकों ने भी हिस्सा लिया। नागालैंड की कॉफी अब केवल एक सामान्य उत्पाद नहीं रह गई है, बल्कि धीरे धीरे एक विशेष और प्रीमियम कॉफी के रूप में पहचान बना रही है। सफलता किसानों और कॉफी से जुड़े लोगों की मेहनत का परिणाम है। नागालैंड की जलवायु और मिट्टी अरबिका और रोबस्टा दोनों तरह की कॉफी की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। राज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी उगाने की क्षमता है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 63% है। हालांकि अभी केवल करीब 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही कॉफी की खेती हो रही है, जो राज्य के 17 जिलों में फैली हुई है। इस बड़ी संभावना को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित उत्तर पूर्व विजन के तहत नागालैंड की कॉफी वैश्विक पहचान बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि कॉफी की खेती नागालैंड में सतत आर्थिक विकास का एक मजबूत माध्यम बन रही है। इस मिशन के तहत कोहिमा जिले के तोफेमा और न्यूलैंड जिले के घोटुवी को पायलट क्लस्टर के रूप में चुना गया है। इन क्षेत्रों को कॉफी उत्पादन और मूल्य संवर्धन के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना के मुख्य हिस्सों में हाईटेक नर्सरी, 400 हेक्टेयर में खेती का विस्तार, मिट्टी संरक्षण और टेरेसिंग, वॉशिंग स्टेशन, रोस्टिंग और ग्राइंडिंग यूनिट तथा कॉफी पर्यटन जैसी गतिविधियाँ शामिल है। इसके तहत फार्म स्टे जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। कॉफीज ऑफ नागालैंड को एक प्रीमियम ट्रसेबल और सिंगल ओरिजिन कॉफी ब्रांड के रूप में देश और विदेश के बाजारों में पहचान दिलाने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी जोर दिया जाएगा। इस पहल से कॉफी उत्पादन में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। अभी जहां प्रति हेक्टेयर 200 से 300 किलोग्राम उत्पादन होता है, वहीं इसे बढ़ाकर लगभग 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से किसानों की आय बढ़ेगी और खेती, प्रोसेसिंग, रोस्टिंग, बरिस्ता, प्रशिक्षण और पर्यटन के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही ग्रामीण युवाओं की भागीदारी भी कॉफी उद्योग में बढ़ेगी। नागालैंड में विकसित नागालैंड 2047 के तहत वर्ष 2047 तक 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी कोहिमा से आसोनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।

0: श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं कहानी अरुणाचल प्रदेश की ताइक्वांडो स्टार रूपा बयूर की। रूपा बयूर ने हाल ही में एक इतिहास रचा। मंगोलिया में आयोजित हुई 9वीं एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता और इससे पहले भी उन्होंने इसी चैंपियनशिप में 2024 में वियतनाम में भी कांस्य पदक जीता था। यानी दो बार पदक विजेता होने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने पूर्वोत्तर के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया। तो आइए रूपा बयूर की कहानी सुनते हैं। रूपा बयूर से बात की है हमारे सहयोगी विशेष ने।
1: नमस्कार रूपा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, थैंक यू।
1: इन 9th एशियन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2026 में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: थैंक यू सो मच आप सभी को।
1: से जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आपका अनुभव रहा जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता?
2: एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा था क्योंकि मैंने बैक टू बैक इस बार मारा था। मैंने 8 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था और आफ्टर 2 ईयर्स बैक अब ये 9 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मेरा कॉन्फिडेंट लगता है नेक्स्ट टाइम और मैं अच्छे कर सकता हूँ, तो मुझे तो ऐसा फील बहुत अच्छा आ रहा है
1: जी। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आपने वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप में जब भारत को जीत दिलाई थी तब उसमें आपकी रैंकिंग में इजाफा हुआ। उसके पहले G2 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता। उससे पहले एशियन चैंपियनशिप में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में ताइक्वांडो में भारत को मेडल दिलाया। तो उसी कड़ी में एक और मेडल आपकी झोली में गिरा है, तो किस तरीके से आपकी तैयारी रही है?
2: तैयारी तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बट इसमें मेरा सिर्फ फिजिकल या मेंटल सिर्फ नहीं था, मेरा बहुत और बहुत जनों का कंट्रीब्यूट भी था क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना लंबा जो आना, तो इसीलिए उसपे काफी मेहनत रहा है मेरा कोच का, जिन्होंने मुझसे ज्यादा तो उन्होंने ही इस चीज के लिए तैयारी किया था उसका प्लानिंग का हिसाब से, और हमारे ट्रेनिंग वो मेंटेन करना पड़ता था, तो हमारे लिए काफी टाइम दिक्कत भी हुआ था कि हम ये जो प्रोग्राम को आगे लेकर आने के लिए, बट धीरे धीरे हम हार नहीं माना है, तो धीरे धीरे आगे ये चलते गए, तो काफी प्लानिंग का साथ में हमारा काफी सिस्टमेटिक के हिसाब से हो गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन इजी नहीं था, तो बहुत तकलीफ था, बहुत काफी सारा तकलीफ आया, दिक्कतें आई थी, बट अब ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है अब मेडल मिलने के बाद।
1: बाकी खिलाड़ियों से आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से अलग रही?

0: जिसने आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दिलाने में मदद करी?
1: मैं हमेशा मेरा कोच को बहुत बिलीव करता हूँ, तो मेरा कोच का ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से मैं करता हूँ हमेशा। तो जैसे हमारा डाइट फॉलो करना, केयरिंग करना, और जैसे मतलब पूरा दिन मेरा ट्रेनिंग पे रहता था। ट्रेनिंग करके आते, फिर खाना खाते, फिर रेस्ट करते, फिर ट्रेनिंग करते, फिर खाना करके फिर सो जाते, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा शेड्यूल वही रहा। और हमारा फोकस एक जगह पे टिका रहा कि हमें ये करना है। तो उस हिसाब से आप फिजिकली सिर्फ या ट्रेनिंग करते हैं बोलने से भी नहीं होता है, आपका माइंड भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है इस चीज के लिए। तो हम जो चीज फोकस करते हैं, जो उसी हिसाब से हमारा ट्रेनिंग, मेरा सर का हिसाब से मैंने ट्रेनिंग किया है, तो उसके लिए आज रिजल्ट आया तो मुझे बहुत अच्छा, मैंने मेरे सर पे भरोसा किया है। तो
0: जी मैम, और आप थोड़ा सा ताइक्वांडो खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से ये खेल बाकी खेलों से अलग है।
1: ताइक्वांडो जो है कोरिया का नेशनल गेम्स है, तो ये काफी मतलब ओलंपिक का इवेंट्स है। तो मतलब बहुत इसमें डिफरेंट वही है कि ताइक्वांडो में क्यूरिगी और पुमसे जो है डिफरेंट वही है कि क्यूरिगी में वो फाइटिंग होता है, एक दूसरे को फाइट करता है। बट पुमसे का डिफरेंट वही है कि हम परफॉर्म करता है एक दूसरे में, बट हमारा भी सेम बाउट होता है, बट हम परफॉर्म करते हैं उसमें, हम एक दूसरे को फाइट नहीं करते, हम परफॉर्म करते हैं। हम जो परफॉर्म करते हैं, हमारा जो टेक्निक है वही टेक्निक क्यूरिगी में यूज करता है। तो हम बोलते ताइक्वांडो, लेकिन हमारा ताइक्वांडो का अंदर आने के बाद दो डिसिप्लिन हो जाता है, तो वही डिफरेंट वही है और कुछ नहीं है।
0: जी, और अब इस साल आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं, तो किस तरीके की आपकी तैयारी है?
1: अभी तो फिलहाल मेरा तैयारी, अभी अभी मैं वापस जाएंगे इंडिया, इंडिया जाने के बाद मेरा तैयारी तो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2021 से। तो अभी होपफुली हमारे जो प्लानिंग का हिसाब से अभी होएंगे तो और अच्छा रहेंगे। अभी जाएंगे वापस, फिर वापस अपना ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो अपना जो प्लानिंग है, शेड्यूल है, उस हिसाब से करेंगे। तो उसके लिए और ज्यादा मुझे डबल काम करना है, तो मुझे और ज्यादा करना है।
0: जी, आपकी ट्रेनिंग और तैयारियों के लिए भारत सरकार आपकी किस तरीके से मदद कर रही है?
1: भारत सरकार मुझे काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी हमारे लिए सबसे वो होता है कि फाइनेंशियल में मुझे काफी इश्यू होता है। तो हम चैंपियनशिप में आना जाना, मुझे रहना खाना और मुझे ट्रैवल करना या टिकट, ये सब में काफी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा हेल्प किया है भारत सरकार ने भी, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वो ने भी। तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ उसके लिए, और उसने काफी हेल्प किया है ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग में, फाइनेंशियल के इशू में मुझे काफी हेल्प किया है।
0: जी हाँ, और ये दूसरा मौका है जब आप स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं, तो हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से भारत के लिए मेडल्स जीतती रहेंगी, और हम आपसे इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच।
2: एरी सिल्क के बारे में अपनी अगली रिपोर्ट में आपको विस्तार से बता रहे हैं, और इस रिपोर्ट में आप जानेंगे खास तौर पर मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में एरी सिल्क का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। एरी सिल्क पूर्वोत्तर भारत की एक अलग शिल्पकला की पहचान है। ये रेशम कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता का प्रतीक है, और इस रेशम से पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण भी एरी सिल्क के माध्यम से हो रहा है। तो आइए, पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक तंत्र का एक अहम हिस्सा एरी सिल्क के बारे में आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं।
3: मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पी सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है, जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। समानता शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है, जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है, और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के रीभोई

0: जिले और उमड़ेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमड़ेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है, जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के वर्षों में एरी सिल्क को मिला GI टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। GI टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरी सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30-40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरी सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरी सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण वहां की संस्कृति से मिलता है। विभिन्न जनजातियों में महिलाओं को समाज में हमेशा से ही प्राथमिकता दी जाती रही है। और इसके अलावा हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों से महिलाओं ने हमेशा से ही अपनी अलग मिसाल पेश की है। और वास्तव में भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण है। इसका उदाहरण हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि महिलाएं पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं और अपनी आजीविका के लिए अपनी आर्थिक निर्भरता से अपनी आजीविका कमाती हैं। और इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक बहुत अहम उदाहरण है। आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
2: देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने में महिलाओं को वरीयता दी जाती है। खेल कूद में पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। इस क्षेत्र की विविधता और जनजातीय समाज की खासियत ने महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पूर्वोत्तर भारत में कई जनजातियां मातृ सत्तात्मक प्रणाली का पालन करती हैं, जहां संपत्ति और वंश मातृपक्ष से चलता है। मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां इस प्रणाली का प्रमुख उदाहरण है। इन समुदायों में परिवार की संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है और पुरुष विवाह के बाद पत्नी के घर में रहते हैं। ये प्रणाली महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में ऊपर रखती है, जिससे वे परिवार और समुदाय में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मणिपुर में इमा मार्केट या मदर मार्केट एक प्रमुख उदाहरण है, जहां लगभग 5000 महिलाएं व्यापार करती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा बाजार है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। ये बाजार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। इस बाजार में महिलाएं हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और वस्त्र जैसी कई वस्तुओं का व्यापार करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर त्योहारों के संदर्भ में बात की जाए तो मणिपुर का थाबल चोंगबा एक प्रमुख उत्सव है, जहां महिलाएं नृत्य और संगीत में सक्रिय भागीदारी करती हैं, जो उनके सांस्कृतिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। इसी प्रकार नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है, जहां वे पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं।

खेलकूद के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही हैं। मणिपुर की मैरी कॉम मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनी है, जो इस क्षेत्र की महिलाओं की क्षमता और दृढ़ता का प्रतीक है। उनकी सफलता ने न केवल मणिपुर बल्कि पूरे देश की महिलाओं को प्रेरित किया है।

0: इसके अलावा असम की हिमा दास ने एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है, जिससे क्षेत्र की अन्य महिलाओं को खेल कूद में करियर बनाने की प्रेरणा मिली है। उद्यमिता के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए असम में असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी हैं। मिजोरम में महिला साक्षरता दर 90% तक पहुंच रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस साक्षरता दर से महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं।
1: श्रोताओं, आपको उम्मीद है आज का कार्यक्रम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में कृषि और मुख्य रूप से कपास फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले श्री रंग देवबा लाड के साथ हमारी खास बातचीत। परभणी से सुदर्शन चापके के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
3: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुनी तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड है। तो तब तक कहीं सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राजमान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्रज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
2: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
3: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्र की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थात निर्भर है और कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है तो और दूसरी जो सिंपोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा ये बड़ी और छोटी है। बड़ी में तो डेंडों की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है और जो सिंपोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है उसको डेंडू की संख्या ज्यादा लगती है और उसका डेंडू का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा अनाजाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिंपोडिया का जो डेंडू है वो ज्यादा देती है उसका वेट भी ज्यादा है और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक अड़सर है मोनोपोडिया। तो इसको निकालने का मुझे ऐसा लगा कि सब अनाज सिंपोडिया को दे दिया तो इसमें कपास का वेट बढ़ जाएगा ऐसा मुझे मन में लगा चिंतन के बाद और फिर वो सही या झूठ है ये देखने के लिए मैंने मोनोपोडिया को 5 पौधे के मोनोपोडिया को कट कर दिया और जैसा कट दिया जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही होने लगा। सिंपोडिया की लंबी बढ़ गई, सिंपोडिया के डेंडू की संख्या बढ़ गई, उसके वजन जो डेंडू 5-6 ग्राम का मिलता था अभी वो 8 ग्राम का मिलने लगा। एक फल फांदी पर 3-4 डेंडू लगते थे वो 7-8 आने लगे और मुझे बहुत खुशी लगी कि मेरा चिंतन सही दिशा से चल रहा है। परंतु मेरे मन में तो खात्री हो गई ये सही दिशा है और ये तंत्र किसानों का भला करने वाला है, परंतु किसान स्वीकार करेगा का नहीं करेगा मेरे मन में आशंका होती और किसानों को स्वीकार करने के लिए मुझे कई मात्रा में संघर्ष यानी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं समझाने का संघर्ष करना पड़ा।
2: कपास अनुसंधान और नए प्रयोगों के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर आपने उन्हें पार कैसे किया?
3: मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कृषि शास्त्रज्ञ भी वो बोलते थे कि भाई दादा लाड क्या है उनका चिंतन तो हम नहीं बोल सकते लेकिन हमारे अभ्यास से कि एक पौधे के समझो 3 मोनोपोडिया गई एक पर पांच डेंडू बोले तो 15 डेंडू कम हो गए, 5 ग्राम बोले तो यानी 70-75 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है, और दादाला टेक्नी से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा। और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूँ, और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगे, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटे पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो तीन बड़ी बड़ी ढालियां काटना, यानी पति को मान्य होगा तो पत्नी आड़ आती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता आड़ आता था, ऐसा घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
2: दादालाड, आपकी तकनीक से किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
3: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो, अभी 7,000 रूपए क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15 से 20 क्विंटल तक जाता है, तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है, तो 1,20,000 का 7,000 रूपए पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रूपए, कहाँ पत्ती 40,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
2: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी उनको लगन नहीं है खेती की, और ये नए आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति उपज नहीं आता, लेकिन अलग अलग फसल में, केवल कपास का फसल आपके सामने आया है लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे, और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है। और युवाओं को तो ये खातरी हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है, और ये तंत्र से मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
2: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
3: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है तो वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए अनाज भी होना चाहिए, तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूं भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूं तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते है, हर दिन का हर ज्वार का है भाकरी का है, तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
2: दादालाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गाँव मलसोना और हम कह सकते हैं कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में कृषि और मुख्य रूप से कपास फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले श्री रंग देवबा लाड के साथ हमारी खास बातचीत। परभणी से सुदर्शन चापके के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another informative and interactive edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To walk you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर होल्ड्स वाइड रेंजिंग डिस्कशंस विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन न्यू दिल्ली. कॉल्स फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ ट्रेड डील. In Indian bullion market, gold prices rise marginally while silver prices remain largely unchanged last week. And domestic investors to focus on corporate earnings, geopolitical developments and global economic data for Q's next week.
1: Videsh Mantri Dr. S. Jayashankar ne America ke Videsh Mantri Marco Rubio se Nayi Delhi mein kai muddon par charcha ki. Vyapar samjhauta shighr sampann karne ko kaha. भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़त, जबकि चांदी में ज्यादा हलचल नहीं रही. और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा कंपनियों की आमदनी, वैश्विक गतिविधियों और आर्थिक आंकड़ों पर.
0: And Subodh, as we do every day, let's once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, without much ado, let's take the first big story of the day. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude the trade agreement at the earliest and welcomed the expansion in energy trade.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
0: On the Iran conflict, Mr. Jayashankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. Meanwhile, U.S. Secretary of State Marco Rubio emphasized that U.S. relation with any country in the world does not come at the expense of its strategic alliance with India.
4: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
0: Responding to a question on Iran, he said there is good news on that front and indicated that further positive developments are expected soon.
1: जी, और कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास. दिल्ली से विनोद हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
5: पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार.
2: अच्छा, मैं आकाश जी से जानना चाहता हूँ कि अगर हम ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में, तो कौन सा रास्ता भी ओपन है और जो सबसे इफेक्टिव हो? मेरे पास टाइम की बहुत अभाव रहता है और ना ही मेरे पास एक्सपर्टाइज है, तो मुझे ऐसा रास्ता बताएं जो मैं आसानी से कर सकूं, जिसमें एक्सपेंस कम हो और मेरे लिए बहुत आसान हो जो, और जो भी इन्वेस्टमेंट ले रहा हो। थैंक यू
5: विनोद जी। जो सबसे पहला और सबसे सिंपल और लीस्ट एक्सपेंसिव तरीका है वो है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। सो हमारे इंडियन डोमेसाइल्ड ऐसे काफी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन रखती है और उनमें पैसे भी इन्वेस्ट करती है। बट अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से जो दिक्कत चल रही है वो ये चल रही है कि सरकार की तरफ से जो एक लिमिट होती है कि कितना फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉलर यूएसडी डॉलर 7 बिलियन होती है वो, और वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ब्रीच हो चुकी है। उसके बाद एक सेकंड लिमिट होती है जो कि फंड हाउस वाइज होती है $1 बिलियन की, तो कुछ फंड हाउसेस की वो बची है। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे कि कुछ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स अभी भी ऐसी है जो पैसे ले रही है, तो जो सबसे आसान तरीका है वो तो यही है कि जो एक अच्छी स्कीम अगर अभी भी पैसा ले रही है उनमें आप निवेश कर सकते हैं। जब आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करें तो उसमें बेहतर रहेगा कि आप देखें कि जो उसका मैंडेट है वो बहुत ही नैरो ना हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक रीजन को लेकर ना हो। बेहतर रहेगा कि अगर यूएस रिलेटेड हो या नैसडैक 100 रिलेटेड हो। नैसडैक 100 के फंड्स अभी मेरे ख्याल से कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे, वो उन कारणों की वजह से बंद है। तो बट जहां पे भी एक जो आरबीआई की लिमिट है, जहां पे भी जिन फंड हाउसेस ने अभी तक नहीं ब्रीच करी है वो ले रहे हैं यूएस की, आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। जो दूसरा एक तरीका है वो ये तरीका है कि कुछ ईटीएफ्स अवेलेबल है इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर भी, जैसे कि नैसडैक 100 का ईटीएफ हो गया, बट ये थोड़ा सा बीच बीच में प्रीमियम पे अवेलेबल होंगे। उसका कारण यही है कि जो पीछे से यूनिट्स है वो अभी तक क्योंकि वहां पे पैसा निवेश नहीं कर सकते तो क्रिएट नहीं हो रहे, तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनकी डिमांड ज्यादा होने के वजह से वो थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। बट आप उनको देख सकते हैं 5-6% प्रीमियम पे अगर आपको मिल रहे हैं तो आप वहां से निवेश कर सकते हैं। और जो एक तीसरा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप किसी भी एक फॉरेन ब्रोकर, जैसे कि इंटरएक्टिव ब्रोकर्स हो गए, और कोई तरीका हो गया, आजकल बहुत ज्यादा फिनटेक एप्स है जिनके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। आपको कुछ ही बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते, आप उनके थ्रू अपने एक फॉरेन ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और वहां पे जाकर के आप एक बाहर का ईटीएफ में निवेश कर दीजिए।
0: आइए आकार जी दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। जयपुर से जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी सवाल पूछें। मीनवाइल लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली। विशाल वेलकम, सवाल पूछें।
6: मैडम जैसे मैं एक साल में कितना शेयर मार्केट में, जैसे मान लो मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, तो कितना टैक्स मेरे को देना होगा या नहीं देना होगा?
5: विशाल जी देखिए, शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स है, जो इक्विटीज है, उनके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो लॉन्ग टर्म, यानी कि जब आपने अगर कोई सा भी एक इक्विटी का स्टॉक या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा रखा, तो उसपे जो भी मुनाफा आता है उसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं, और सिर्फ मुनाफे पे 12.5% का टैक्स लगता है। लेकिन यहीं पे एक चीज हमारे को ये भी सहूलियत है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसे इक्विटी से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख रुपए तक का आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो उसके बाद का जो मुनाफा है उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। और यदि कोई भी सिक्योरिटी पे जो इक्विटी ओरिएंटेड है आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो वहां पे जो टैक्स लाइबिलिटी होगी मुनाफे पे वो 20% होगी।
1: जी आकार, इसमें कई बार ये सवाल उठता है, मान लीजिए जैसे किसी ने 2-3 तरह से निवेश कर रखा है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में है या शेयर में है, कहीं भी है, तो क्या ये सारे मुनाफे को जोड़ के या नफा नुकसान जो भी होता है पूरे को जोड़ करके ये एलटीसीजी होगा या
5: नहीं? नहीं, पूरे को जोड़ करके होगा, वो एक कंबाइंड पर होता है। जो आपका 1.25 की लाख की लिमिट है वो भी आपकी अक्रॉस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स,
1: तो यानी कहीं कोई नुकसान हुआ है तो उसको एडजस्ट कर लें आप उसके बाद ही देखें। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
7: हाँ सर, ये बोला था कि जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है और गवर्नमेंट का सिविल बैंक का जो रिकरिंग डिपॉजिट है, उन दोनों में किसका आज के डेट में ज्यादा पड़ता है बेनिफिट?
5: देखिए, जो रिकरिंग डिपॉजिट है और जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है, अगर हम लोग टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में ऑलमोस्ट दोनों एक बराबर है. टैक्सेशन अब डेट फंड्स की भी आपके स्लैब रेट पे ही टैक्स होती है. लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है लिक्विडिटी का. जो रिकरिंग डिपॉजिट है वहां पर आपने रिकरिंग डिपॉजिट खोला होगा वहां पे आपने एक टाइम की सीमा तय की होगी कि एक साल के लिए मैं करूंगा, दो साल के लिए करूंगा, तीन साल के लिए करूंगा, हर महीने इतने पैसे मैं जमा करूंगा. अगर आप उससे पहले उसको तोड़ते हैं, प्री मच्योरली क्लोज करते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ था वो उसके बजाय जितने टाइम पे आप तोड़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने तीन साल के लिए तय किया था लेकिन आप एक साल के बाद ही तोड़ रहे, तो बैंक आमतौर पे क्या करेगा कि जो उस समय पे एक साल के लिए रेट एप्लीकेबल पे था उस पे भी कुछ पेनल्टी लगाएगा आधा 1% की, और फिर वो घटा करके देगा. लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड रहेगा, वहां पे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती. लेकिन वहीं पे मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो रिकरिंग डिपॉजिट्स है वहां पे जो आपका रिटर्न है वो गारंटेड रहता है, वो फिक्स्ड रहता है. वहां पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो जो भी इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट पे पड़ेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं हो सकता. बट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भले ही काफी सेफ होते लेकिन वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो उसमें एक गारंटेड रिटर्न के लिए हम लोग नहीं कह सकते और थोड़ी सी वोलेटिलिटी मिल सकती है आपको.
0: जी आइए चले सोनीपत की तरफ जहां से दीपक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. दीपक जी सवाल पूछें.
8: नमस्कार मैम.
0: जी नमस्कार
8: मैम. मेरा एक्सपर्ट से ये सवाल था, जैसे मेरा एक पीपीएफ अकाउंट है.
0: जी
8: हेलो.
0: हाँ जी.
8: तो जैसे मैं कोई म्यूचुअल फंड ढूंढ रहा था डेप्ट म्यूचुअल फंड में, जैसे हर महीने उसमें 12,500 जमा कर दे और साल के लास्ट में उसको रिडीम करके सीधा पीपीएफ में डाल दे 1,50,000 रुपए, तो ऐसा कौन सा डेप्ट म्यूचुअल फंड सही रहेगा या उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है मेरे पास?
5: देखिए आमतौर पे जब भी हम एक साल के लिए पैसे जमा करते हैं तो लिक्विड म्यूचुअल फंड सही रहता है. बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे कारण क्या है, आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए पैसे जमा कर रहे हैं. देखिए पीपीएफ अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको आज की तारीख में 7.1% गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न देता है. लेकिन अगर आप अभी अक्यूमुलेशन फेज में हैं, आपका जो पीरियड है काफी लंबा है, ये पैसा इस तरीके से है कि आपको 14-15 साल के बाद चाहिए, तो फिर उसके लिए ये एक सही इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा. आपको किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए, ना कि डेट फंड, ना ही पीपीएफ. वहीं पे अगर आप रिटायरमेंट के पास है या फिर आप एक सब्सटेंशियल पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर चुके हो और आपको एक फिक्स्ड इनकम एलोकेशन के लिए करना है, तो पीपीएफ बेहतर रहेगा.
1: जी, और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा बीते सप्ताह में. पिछले हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला रुख बना रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 0.1% की मामूली बढ़त आई और ये 1,58,679 रूपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जुलाई अनुबंध के लिए चांदी वायदा में ज्यादा हलचल नहीं रही और 40 रूपये की गिरावट के साथ इस हफ्ते 2,71,846 रूपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में गिरावट जारी है. जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स लगभग 1% गिरकर $4,510.50 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 2% से ज्यादा गिरकर $75.91 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई. और इसके बाद हमारे पास क्या खबर है सौरभ जी, तो एफपीआई के बारे में भी बता दें हम श्रोताओं को. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई

0: मई में अब तक 30,374 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई की कुल बिकवाली 2,22,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने मई में अब तक भारतीय ऋण बाजार से डेट जनरल लिमिट वर्ग से 401 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन ऋण बाजार के ही वीआरआर और एफएआर वर्गों में 703 करोड़ और 4,261 करोड़ रुपए की आवक दर्ज की गई है।
1: और इस बीच कुछ और लिसनर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से वेदनाथ जी। वेदनाथ जी, अपना सवाल पूछें।
2: नमस्कार, मार्केट मित्र ठीक
1: जी? नमस्कार
2: मैडम जी, मेरा इस प्रकार सवाल है कि ये म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा या ईटीएफ में बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट?
3: वेदनाथ जी देखिए, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ एक तरीके से एक ही पूल्ड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो एक तो है कि आप इनको किस तरीके से इसमें निवेश करते, किस तरीके से खरीदते, और इनका एक मेन जो एक ऑपरेशनल तरीका है वो क्या है। देखिए, जो ईटीएफ है, ईटीएफ एक किसी भी मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि आपका सेंसेक्स हो गया या आपका निफ्टी हो गया। ये आपका पैसा हर उस शेयर में लगाएगा जो कि सेंसेक्स में है या फिर निफ्टी में है, जो भी आप इंडेक्स चूज करेंगे, और उसी प्रपोर्शन में लगाएगा। ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको एक स्टॉक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जिस तरीके से शेयर्स खरीदे जाते हैं ये उसी तरीके से आपको उसके थ्रू खरीदना पड़ेगा। वहीं पे जो म्यूचुअल फंड है ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है। इसके लिए आपको यहां पे भी, अगर आप चाहेंगे किसी एक इंडेक्स में, जैसे कि खाली सेंसेक्स या निफ्टी हो गया, निवेश करना चाहेंगे, तो यहां पे आपको एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, और यहां पर आपको एक अलग से डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना नहीं पड़ेगा। ETFs का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आमतौर पर थोड़ा सा सस्ता होता है एक म्यूचुअल फंड से, बट अगर आप शेयर्स में, जो कि मेरे को लग रहा है आपकी बात से अभी तक आप नहीं करते शेयर्स में इन्वेस्ट या स्टॉक्स में नहीं करते, तो मेरे हिसाब से सही रहेगा कि आप एक म्यूचुअल फंड के साथ आगे बढ़िए। एक कोई भी अच्छा इंडेक्स फंड लीजिए सेंसेक्स या निफ्टी का, और उसमें एक SIP चालू कीजिए छोटे अमाउंट से हर महीने से, उसमें एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना चालू कीजिए।
0: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: सर, इन लास्ट वन ईयर निफ्टी हैज गिवन -2.5 to -4% रिटर्न एंड BSE 7%, सो दिस हैज अफेक्टेड अवर रिटर्न इन नॉट ए मेजर वे, इन अ लॉन्गर टर्म इट हैज नॉट अफेक्टेड, बट इन लास्ट ईयर इट हैज अफेक्टेड अ लॉट। व्हाट स्ट्रेटजी शुड वी डू और चेंज इन इन्वेस्टमेंट? शुड वी गो फॉर नाउ मोर ऑफ इंडेक्स फंड्स, और वी शुड कंटिन्यू विद एक्टिव फंड्स विच आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर इन द लॉन्गर रन? एक निजी छोटे सलाह इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? वी शुड कंटिन्यू विथ अवर रिटर्न इन अवर फ्लेक्सी कैप SIPs, और कुछ वी शुड चेंज अवर स्ट्रेटेजी से गो फॉर इंडेक्स फंड और सेंसेक्स, एनी पर्टिकुलर सेंसेक्स फंड, आई मीन, और वी शुड कंटिन्यू विथ अवर फ्लेक्सी कैप SIPs और मल्टी कैप SIPs एज वी हैव बीन डूइंग, बिकॉज वी कैनॉट इन्वेस्ट मच इन high. US market is also very high. So the best bet should be for us in Indian market with through SIP in FlexiCap fund, or aapka jo bhi suggestion hai. Thank you.
3: Shankar ji, yes, you are right. The last 1 year returns haven't been that great. There have been a lot of global uncertainty plus, you know, a lot of things going on. But at the same time, I would say the best strategy for a retail investor right now would be to stick with their plan and do not, you know, unnecessarily make any changes in their portfolio or the strategy just because that, you know, some XYZ event is happening or the market is not, you know, giving returns over the last 1 year. So ideally, you should be sticking with your asset allocation. For a long term, the ideal asset allocation generally is 70-30, wherein 70% is equity. For the equity, as you were mentioning, if you are an experienced investor, which I believe that you are not entirely new into the stock markets, then a flexi-cap diversified portfolio would be better, or even a multi-cap fund would be better, because there, besides the large cap, you would also get some exposure to mid and small caps, which can in turn boost your returns over the long term. So the best strategy, I'll repeat, would be to just stick with your asset allocation, stick with your long-term financial plan, don't panic, be disciplined, keep investing regularly and maintain a diversified portfolio through FlexiCap or multi-cap funds for the equity portion.
1: And Jay Kumar joins us from Ghaziabad. Jay Kumar ji, apna sawal poochein.

0: किट ममता टीम को मेरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: मेरे दो सवाल हैं, एक तो ईरान और यूएसए जो वार है उसके क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, दूसरा कि रुपीस हमारा इतना डेवलप्ड हो गया है 10-11 रुपए पिछले एक साल में, तो इससे कौन से सेक्टर्स पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और क्यों?
2: जय कुमार जी, देखिए जो रुपी है आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 2026 में ही अगर हम लोग देखें तो शुरुआत से लेकर अभी तक कुछ 7% के आसपास, 7.2% के आसपास का डिप्रिसिएशन आया है रुपी में। और देखिए जो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है पूरा का पूरा इकोनॉमी पे, पूरा स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि ऐसी काफी चीजें हैं जो इंडिया हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल हो गया और भी कई चीजें हैं, तो इन सबकी पेमेंट्स यूएस डॉलर में होती है। जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो वो एक हमारे लिए एज अ इकोनॉमी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हम लोगों को उन्हीं चीजों के लिए और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, हमारे लिए वो इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं रहता। तो एज अ इकोनॉमी, एज अ स्टॉक मार्केट वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। बट जैसे कि अभी हम लोग पिछले कॉल पे बात कर रहे थे, तो यही समय है जब इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना है और एक लंबे समय के लिए बना के चले, अपना एक असेट एलोकेशन मेंटेन जरूर कीजिए।
1: एंड फ्रॉम चेन्नई कृष्णमूर्ति जी जॉइन्स अस।
3: Good evening.
1: Ji, good evening.
3: If the dividend or interest that I receive from the companies is below 5,000, earlier there was no TDS deduction, has been increased to rupees 10,000 now, were number one. And number two is, what is the new form that you have to file in lieu of form 15G and 15H earlier?
4: Hum maafi chahenge, abhi aaj ka program humara mutual funds par hai aur इससे जुड़ी हुई अगर कोई बातें हैं, इससे जुड़े हुए सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो आपका सवाल था वो शायद हम सैटरडे को और मंडे को आप पूछें तो वो बेहतर हम जवाब दे पाएंगे। अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से बीबी नरूला, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
5: यस, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड and for the last 1 to 2 months I am finding that the NAV is stagnant. In fact, when the equity market goes down, the debt funds should at least be going up at the rate of say 5 to 6% per annum, but it's stagnant. The NAV is 63 for last 2 months, and in fact daily I find that it's going down. Why is that so?
2: The main purpose of the short duration fund is to bring stability in your portfolio, to some kind of stability. It need not necessarily increase. So I mean the returns for a debt fund is related to the yield of the bonds. So previously there have been recently a spike in the yield which impacts negatively on the bond funds. The longer the duration of the bond, the higher is the impact. So the impact is lesser on the short duration funds. If you would look at long duration or gilt funds, the impact is higher. They are even in the negative terrain. But at the same time, I would say don't look at these funds from the perspective of return. Look at them from the perspective of bringing some kind of stability in your portfolio. As you rightly mentioned, that it's static. It's right over there. So that's the main purpose, to bring stability and to bring some sort of, stability in your portfolio.
1: और योगेश जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, योगेश जी सवाल पूछें।
6: जी, बिल्कुल, नमस्कार
1: जी।
6: मेरा सवाल ये है कि लिक्विड फंड में, और मैं खासतौर पे ICICI और काफी AMC के अंदर मैंने नोटिस करा है, ज्यादातर AMC के अंदर लिक्विड फंड में 7 दिन के अंदर अंदर हम पैसे को निकाल लेते हैं डालने के बाद, तो चार्ज करता है एग्जिट लोड का या किसी चीज का, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वन में और शॉर्ट टर्म वन में कोई चार्ज नहीं है, वो एक भी निकाल सकते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फंड ज्यादा त्वरित होता है, वो ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, तो उसमें चार्ज करता है 7 दिन के अंदर निकालने पर, लेकिन बाकी में नहीं करता, इसका क्या कारण है?
2: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो लिक्विड फंड्स है उनमें बाय लॉ कुछ समय पहले ये चीज हो गई थी कि अगर आप विद इन 7 डेज निकालेंगे तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और ये स्लैब वाइज है कि अगर आप विद इन 1 डे निकालेंगे, विद इन 2 डेज निकालेंगे, विद इन 3 डेज निकालेंगे, तो उस हिसाब से। सो आइडियली अगर आप जो एक इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हैं जो कि 7 दिन से भी कम है, कुछ 2-3 दिनों के लिए, तो आपको लिक्विड फंड के बजाय ओवरनाइट फंड में जाना चाहिए। ओवरनाइट फंड्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो बहुत ही शॉर्टर टेन्योर के होते हैं, उसमें एज सच एग्जिट लोड भी इतना एप्लीकेबल नहीं होता है एंड वो आइडियल रहेंगे फॉर एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ लेस देन अ वीक। अगर आप थोड़ा कुछ दो तीन हफ्ते महीने कुछ महीनों के लिए देख रहे तो फिर आप लिक्विड फंड की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज ओवरनाइट फंड्स भी चूज कर सकते हैं।
4: और अब अगली खबर पे चलते हैं। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
7: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a three-day visit to Canada with a delegation of Indian business leaders from tomorrow. The Commerce Ministry informed that Mr. Goyal will have bilateral engagements in Ottawa and Toronto to advance trade, investment and India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement negotiations, CEPA, which will be the central focus of the visit. The terms of reference were signed during Prime Minister Mark Carney's visit to India in March this year. The first round of negotiations was conducted virtually in March and the second round concluded on 8th of May. During this visit, a further round of negotiations will be conducted in Ottawa. Both sides are working towards an early conclusion of a balanced and mutually beneficial CEPA by end of this year, with a shared ambition to expand bilateral trade to $70 billion by 2030. So, I had a question to ask.
4: अगर पूछ सकते हैं, वैसे ये भी हमें बताना है कि अगले हफ्ते बाजार का क्या रुख रहेगा?
1: Absolutely. So first we'll have a look at the markets and then we'll see if time permits. The domestic markets are likely to focus on geopolitical developments, foreign investor flow trends, rupee movements and global economic data for cues in the holiday truncated week ahead. The Indian stock market will remain closed on 28th of May on account of Bakrid. Meanwhile, market participants will continue to monitor the March quarter earnings report for direction. Elsewhere in Asia, Singapore's gross domestic product data and the Bank of Korea's interest rate decision scheduled for release next week will remain in focus. In the United States, market participants will closely watch the second estimate of economic growth for the January to March quarter and the personal consumption expenditures PCE index for April to be released on Thursday. Globally, geopolitical developments will remain a key overhang, while crude oil prices will continue to be a crucial factor influencing market direction. Akar, very briefly, in this volatile time, the markets have been so uncertain. What's your advice to the listeners? Is SIP still the best strategy for small investors? Very briefly.
2: Yeah, definitely, because that's the best way to minimize and reduce the risk of entering at wrong level. So stick with the SIPs and take the benefit of averaging out the cost of purchase.
4: जी, आकार कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, धन्यवाद।
1: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds wide-ranging discussions with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi, calls for early conclusion of trade deal. In Indian bullion market, gold prices rise marginally while silver prices remain largely unchanged last week. And domestic investors to focus on corporate earnings, geopolitical developments and global economic data

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana.

0: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
0: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
1: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उससे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गांव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गांव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की, कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे सम अप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक एनविसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक

0: विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ही आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बता रही हैं, चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 20 जून तक कि कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाए। तो 30 दिन तक यह रूल जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इससे अपेक्षा है।
1: मोहिनी जी, बेहतर व्यवस्था की ओर सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जी राम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा

0: वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जी राम जी के लिए भारत सरकार ने किया है, तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट
1: जी
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम यह रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं,
1: जी
0: ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती है। कई सारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ने भी जो अध्ययन किए थे उसमें यह पता चला था कि कई बार ऐसी योजनाओं की वजह से कई बार किसान भाइयों को पीक एग्रीकल्चर सीजन जो बुआई कटाई का सीजन होता है उसमें कई बार एग्रीकल्चर के लिए जो है श्रमिक की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं यह बैलेंस करना बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर को भी एडिक्वेट लेबर मिलता रहे और एट द सेम टाइम 125 दिन की गारंटी भी लोगों को दी जाए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए एक तरीके से यह 60 डेज का एक कैलिब्रेटेड पॉज जो है वह विकसित भारत जी राम जी में लाया गया है। यह 60 दिन जो है वह कंटिन्यूस 60 दिन नहीं है और ये राज्यों ने तय करना है कि उनके राज्य में कौन से समय पर बुआई कटाई एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है। इसमें भारत सरकार का बिल्कुल ये नहीं है, राज्य ही खुद तय करेंगे कौन से 60 दिन होंगे जबकि उनके किसानों को श्रमिकों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ड्यूरिंग दो 60 डेज नॉट कंटिन्यूअस यह कार्य कुछ देर तक जो है पॉज किए जाएंगे और उसके बाद जो है लोग फिर से उस पर एम्प्लॉयमेंट अवेल कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह एक बैलेंसिंग है बिटवीन हमारे किसानों का कल्याण और श्रमिकों का कल्याण।
1: तो रोहिणी जी, आप कहेंगी कि इस योजना के अंतर्गत जो अभी बदले हुए समय की मांग है उसके अनुसार बहुत कोऑर्डिनेशन है सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो विलेज लेवल बॉडीज हैं, ग्राम सभा जैसे आप कह रही थी, उनके सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि ऑप्टिमम बेनिफिट मिले जो भी खर्च हो रहा है इस योजना पर उससे।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा सोनू जी, जब विकसित ग्राम पंचायत पूछेंगे तो यह एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है कि हमारे पंचायतें जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है पंचायत, तो पंचायत ही इसका प्लान बनाएंगी, परंतु पंचायत में प्लान बनाने के बाद यह प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्रीगेट हो जाएगा और पीएम गति शक्ति जैसे बहुत अच्छे टूल्स के माध्यम से जब यह एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्लान बनेगा और नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के माध्यम से अगर हम और सभी स्टेट और सारे हितधारक अगर ये देख पाएंगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे एक दिन अगर हम ओपन करके हमारा डैशबोर्ड देखते हैं तो उसमें अगर पता चलेगा कि हर एक पंचायत में किस प्रकार के काम कौन से कैटेगरी के कहां तक आए हैं और उस पंचायत का विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है वह कितने परसेंट तक एग्जीक्यूट हो गया है, तो इससे जो है फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही सुचारू रूप से हम पंचायतों को एक विकसित पंचायत की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएंगे रादर देन डूइंग सम एडहॉक वर्क्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत आ जाएगा, प्लान तरीके से हम कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जैसे एसेट डुप्लीकेशन होता है कई बार एक ही काम को अलग अलग योजनाओं में दिखाकर उसमें क्लैरिटीज आ सकती है, तो हमने यह व्यवस्था की है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंश्योर करे कि कार्य बिल्कुल प्लान पद्धति से हो और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो है मिसयूज ना हो।
1: रोहिणी जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के मजबूत संस्थागत, प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय ढांचे के बारे में हमें बताने के लिए और ये बताने के लिए किस तरह से हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये सहायक होगा। बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सोनू जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आज का सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवंत भी। विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा, इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा के गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
3: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद
3: सर। आप नुआपड़ा जिले के सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
4: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापाली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर जैसा लगा, इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारन बार नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ जो सामीप्य है और जो संपर्क है उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के तरफ मेरा रुझान बढ़ गया
3: जी सर।
4: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
3: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारी, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओडिशा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
4: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं, एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक ओडिशा का उपकल जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का आहा जंगल है और पहाड़ पर्वत है जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा से उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुत प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
3: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वो कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं।
4: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहड़ को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टॉर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिलके ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
3: आप वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
4: कहीं

0: जवाने, इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है। ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का वो मंत्र ऐसे गाते थे, कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नई संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और स्मृति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है

0: लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, ये सारे मैसेज ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं जो प्रत्यक्ष है उसके साथ अतीत का किसी घटना को तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है ये समाज का दर्पण है लोकगीत, और लोकगीत में जीवन के सुख दुख परिवार समाज देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं और उसी गीतों में अपना पीड़ा अपना आनंद अपना जीवन का दर्शन ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुँचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन एकेडमी होना चाहिए जैसे कि नेशनल फोकलोर एकेडमी करता है और सारे राज्यों की जितने भी गीत है कहानी है धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी हैं, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ये सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था एक भारतीय मूल्यबोध इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए, बच्चों को खेल कूद गीत और नाच ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है, ये चार चीज अगर दे देते हैं ना तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: आज की जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और मॉडर्न म्यूजिक स्टाइल की तरफ आकर्षित हो रही है, अगर हम पारंपरिक लोक संगीत को इन नई मंचों से नहीं जुड़ेंगे तो धीरे धीरे ये अमूल्य विरासत लोगों की यादों से दूर होती चली जाएगी, तो इसीलिए आज के दौर में जो पारंपरिक लोक संगीत को आधुनिक मंचों से जोड़ने की कितनी आवश्यकता है।
0: बहुत आवश्यकता है, हमारा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बैठा है, इसको सचमुच टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के फिर गांव के पास उसको रिटर्न कराना चाहिए, न कि केवल वो भुवनेश्वर में या दिल्ली में या मुंबई में इसको केवल एक म्यूजियम के रूप में रखा जाए। उसका जो प्रयोग है उसी प्रयोग दो जगह में हो सकता है, एक ही स्कूल कॉलेज में उसका प्रयोग करके इसका अध्ययन के लिए बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देकर बच्चों के गीत और कहानी को क्लासरूम की करिकुलम में देना चाहिए, और दूसरी बात है हमारे देश का जो सामाजिक संगति है वो राष्ट्रीय संगति को बढ़ावा देता है। अगर गाँव की सामाजिक संरचना में हमारा देश का जो परंपरा का जो हेरिटेज या ऐतिहासिक और संस्कृति का बात अगर आगे नहीं रहेगा, आधुनिकता तो बहुत आएगा ही लेकिन साथ साथ हम अपने जीवन से क्या खो रहे हैं, हमारा मेमोरी स्मृति जो है हम उसको खो रहे हैं, हमारा कल्पना और सृजन को खो रहे हैं अगर हमारे गीत और कहानी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आधुनिक समय में जैसे रेडियो और टीवी में लोक गीतों का लोक कहानी कथा का जैसे बढ़ावा दिया जाता है, यूट्यूब के जरिए आज काफी चीज लोग बचा के रखते हैं, आप अगर रिसर्च करेंगे देखेंगे कि बुंदेली छत्तीसगढ़ी अवधी भोजपुरी मैथिली और जितने भी हमारे भारत के आंचलिक भाषा है सारे भाषा में आजकल बहुत ऑडियो और वीडियो यूट्यूब में बहुत देखने को मिलते हैं। हालांकि उसको भी एक अगर उसको पिरोया जाए और राज्य स्तर में एक स्टेट फोकलोर सोसाइटी या केंद्र स्तर में स्टेट नेशनल फोकलोर सेंटर ऐसा अगर किया जाए तो देश का जो नेशनलिटी जो सांस्कृतिक जो हमारा राष्ट्र है आज भी उसी लोक साहित्य हजारों साल से जिंदा है और रहेगा भी। लेकिन

0: एजुकेशन के और आधुनिकता के कारण हमारे परंपरा नष्ट नहीं होना चाहिए।
1: सर और एक बात, कलाकार केवल प्रस्तुता नहीं होता है, वो संस्कृत के संरक्षक भी होते हैं, तो ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में कलाकार की क्या जिम्मेदारी है?
0: बहुत जरूरी है कि भारत ओडिशा बोलने से भारत है और भारत में ओडिशा है। हमारा एक भी गाँव का आदमी वो खुद को एक भारत की संस्कृति और कला का बढ़ावा देने का एक जगह है, तो उसी जगह में वो अपना संस्कृति को बढ़ावा देता है तो वो भारतीय संस्कृति बनता है। कहीं भी कोई खड़ा हो और अपने गीत कहानी और संस्कृति और जीवन को जीता है तो एक भारतीय जीवन को जीता है। कलाकार कभी भी ज्यादा आर्थिक सहायता जो भी मिलता है उसमें चलता है, लेकिन कलाकार के लिए अनुष्ठानिक अनुदान मिलना चाहिए, जैसे कि पाला है, दासकाठिया है, ओडिशी डांस है, अमलपुरी डांस है उड़ीसा की, अगर ये सबके लिए अकेडमी बनता और वो अकेडमी में ज्यादातर ये लोकाभिमुखी होना चाहिए, तब क्या होगा, जिस लोगों ने कला का संवर्धन करके आगे बढ़ाया और जिस लोग उसके ऊपर रिसर्च किया और उसको डॉक्यूमेंट किया, वीडियो बनाया और फिल्म बनाया, उसके साथ एक जोगसूत्र रहना चाहिए, नहीं तो कलाकार लोगों का संवर्धन नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत ऐसा व्यवस्था है, कलाकार पेंशन है और कल्चर डिपार्टमेंट बहुत काम करते हैं।
1: सर पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त करना किसी भी कलाकार के लिए एक अति गौरवमय और यादगार स्थान होता है, तो पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने के लिए कितना भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा?
0: मैं तो एक दो मिनट के लिए स्तब्ध हो गया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि हम तो आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साहित्य और जो अलिखित कला है जिसको कि इंस्टीट्यूशन में या अनुष्ठान में उसका मान्यता अभी तक नहीं मिला है, उसी को हमने 40 साल तक काम किया और उसी को स्कूल एजुकेशन में भी डाला। आपको खुशी मिलेगी कि ये जो गीत और कहानी जो आदिवासियों का था उसमें मैं 41 लैंग्वेजेस में भारत की 5 स्टेट में 35 लाख बच्चों को क्लास 1 से क्लास 5 तक शिक्षण सामग्री मैंने बनाने के लिए मदद किया और आज वो बहुभाषिक शिक्षा के नाम पर आया है। कला को स्कूल में डालने से कला जिंदा रहेगा, जिस मौखिक साहित्य, जिस लोक कला और जो भारतीय ज्ञान व्यवस्था आदिवासियों में है और लोग में है, उसी को आज केंद्र सरकार ने सम्मान दिया है।
1: सर इस सम्मान के बाद आपके जीवन और कार्य में क्या परिवर्तन आया है?
0: परिवर्तन आया है, आ रहा है। पद्मश्री उसके कारण दो है, एक है भारतीय संस्कृति का प्रलेखन और संवर्धन जो कि मैंने लोक साहित्य के जरिए करता हूँ, और दूसरा है भारतीय संस्कृति और भाषा को स्कूल एजुकेशन में डालना लास्ट 40 साल से, ये उनके सम्मान में उनको समर्पित करता हूँ। मैं देश और लोगों की कहानी इसको जुड़ा कर मैंने केवल 25 किताब लिखा जिसको कि आज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चलाते हैं। मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दिए हैं कि मुझे इस देश के लिए, भारत माता के लिए और धरती माता के लिए मुझे और कुछ करना है।
1: एक अंतिम प्रश्न, हर युग में नई और युग कलाकार अपनी प्रतिभा के साथ साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, लेकिन सफलता की यात्रा में धैर्य, लगन और निरंतर मेहनत का बहुत महत्व होता है, तो आप उभरते कलाकार को और लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: उभरते कलाकारों को एक शब्द में देता हूँ, उसका नाम है धीरज। वो धीरज के साथ सीखने के लिए प्रयास करें, न कि अपने को प्रचार करने के लिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी होते हैं अपने बड़ों से नहीं सीखते हैं, परंपरा से नहीं सीखते हैं, हमारे हेरिटेज में क्या है उसको पढ़ते नहीं। उड़ीसा का जो 1000 साल का साहित्य है, अगर कोई 1000 साल का साहित्य और संगीत में पढ़ेगा उसका व्यक्तित्व में काफी प्रभाव आएगा। एक दीर्घकालीन योजना बनाना चाहिए कलाकारों को।
2: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
5: ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर।

0: एज है शॉपिंग.
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
3: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
1: आई नो ना.
3: RBI कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
5: दी, ये देख कैसे.
0: हैप्पी बर्थडे भाई.
5: दिखा,
1: हाँ मेरा फेवरेट कलर.
0: हमेशा शॉपिंग.
1: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
3: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
1: I know na.
3: RBI कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी.
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के.
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी. अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
7: पक्का.
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
9: हर घर सूर्य घर.
10: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय. मुख्य समाचार. दिल्ली सरकार ने यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया. देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया. और दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया. अब समाचार विस्तार से. दिल्ली सरकार ने आज यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं के अंतर्गत जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और जलापूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना और दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और जल सुरक्षित राजधानी बनाना है.
11: इन परियोजनाओं में नजफगढ़ क्षेत्र में 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है. करीब 860 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन प्लांटों की कुल क्षमता को लगभग 46 MGD किया जाएगा और इन्हें केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहले चरण का उन्नयन और क्षमता विस्तार किया जाएगा. करीब 122 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के जरिए उपचारित जल की गुणवत्ता को नवीनतम मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि परियोजना में 11 वर्ष तक संचयन और रखरखाव की व्यवस्था भी शामिल होगी. इससे पुनर्नवीनीकरण पानी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न विभागों की ओर से नए वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण और पुराने ढांचों के पुनर्स्थापन का कार्य करेगी. उन्होंने बताया कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में अमी चंद्र चौक से पुराना कल्याणपुरी सीवेज पंपिंग स्टेशन तक लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख ट्रंक सीवर लाइन का पुनर्वास किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन पहलों से लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह.
10: मुख्यमंत्री ने जनसेवा सदन में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से संवाद कर उनकी समस्याओं, खेती से जुड़े विषयों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर चर्चा की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसान हित से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्रास सिंह ने आज अपनी विधानसभा के ग्राम सभा पूट कला में नालियों, गलियों और सीवर लाइन के विकास कार्यों का शुभारंभ किया. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतर मूलभूत सुविधाओं की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके अलावा श्री सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में गलियों और नालियों के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। श्री प्रधान ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
12: ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी, कम भुगतान के मामलों में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
10: देशभर में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री आशीष सूद ने इस विशेष संस्करण में सहभागिता की और साइकिलिंग के माध्यम से फिट और स्वस्थ भारत के संदेश को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और ईंधन बचाने में मदद करता है। श्री सूद ने कहा कि यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है।
13: फिट इंडिया मूवमेंट है और संडेज ऑन साइकिल्स है भारत सरकार का अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी जो फिट इंडिया के लिए आह्वान करते हैं, जो एक मजबूत फिटनेस के लिए डॉक्टर पे जाने से पहले पैडल मार लो 30 मिनट, तो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान आप अपने लिए कर सकते हैं। और आज तो साइकिल का उपयोग देशभक्ति का भी प्रतीक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। और इतने सारे लोग जो ऑर्गेनिक से आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।
10: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भारतीय धावक गुरिंदर वीर सिंह को सबसे तेज धावक बनने के लिए बधाई दी है। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि गुरिंदर वीर सिंह यह उपलब्धि देशभर के अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित करेगी। दिल्ली सरकार कल सूरहेड़ा गांव में नवनिर्मित चौपाल का लोकार्पण करेगी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहेब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह चौपाल ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने का एक सार्थक प्रयास है। राजधानी आज भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक समरसता के ऐतिहासिक और अद्भुत दृश्य की साक्षी बनी। देश के विभिन्न राज्यों से आए 1 लाख से अधिक वनवासी समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति, वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत और गौरवशाली विरासत का भव्य प्रदर्शन करते हुए 5 विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्राओं में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
14: इन शोभा यात्राओं को आज अजमेरी गेट चौक से लाल किले तक निकाला गया, जिसने पूरे पुरानी दिल्ली क्षेत्र को भारतीय लोक संस्कृति, रंगों, परंपराओं और उत्सव की जीवंत झलक से सराबोर कर दिया। जहां एक ओर पारंपरिक वेशभूषा में सजे वनवासी बंधुओं के समूह आकर्षण का केंद्र बने, वहीं दूसरी ओर वनवासियों के स्वागत में दिल्ली के लोगों द्वारा आयोजित किए गए ढोल नगाड़ों की गूंज, लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां और बैंड बाजों की स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। अजमेरी गेट चौक से शुरू हुई इस यात्रा को भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल और सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा अजमेरी गेट से हौस काजी, चावड़ी बाजार, घंटाघर और चांदनी चौक मेन बाजार से होते हुए ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंची। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ सौम्या शरण।
10: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिला टीम ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बवाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से लगभग 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ कई वर्षों से मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल था। मामले की जांच जारी है। यातायात पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मात्र दो दिनों में लगभग 1100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की है और 12000 से अधिक चालान किए हैं। यातायात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता आर्या ने कहा कि इस विषय पर पहले भी समन्वित कार्रवाई अभियान चलाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
1: रॉन्ग साइड ड्राइविंग पे हम निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। पहले भी कंसर्टेड एक्शन और ड्राइव्स होती रही हैं। लास्ट वीक भी इस चीज पे एफआईआर हुई थी और इस वीक में भी मात्र दो दिनों में फ्राइडे और सैटरडे में हम 1100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुके हैं ऐसे लोगों पे जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो है वो सड़क के ऊपर व्यवस्थित ट्रैफिक को और सड़क के ऊपर सेफ्टी को दोनों को ही बहुत बड़ा खतरा है।
0: राजधानी के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में आज लगभग दोपहर 12:30 बजे आग लग गई। दमकल विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। विभाग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। आयोग ने बताया कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। राजधानी में आज भी भीषण गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने यमुना पुनर्जीवन को सुदृढ़ करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया। देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ के आपूर्ति मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 90 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: दी, ये देख कैसे।
7: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापक ऊर्जा गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते

0: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्यालय मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ मुलाकात की और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करवाया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। श्रोता इसे सुनने के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर जुड़ सकते हैं। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। अब से कुछ ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम स्वर धरोहर।
1: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
0: और मैं श्वेता आपका स्वागत।

स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस विभूति की जिसने उपशास्त्रीय गायन की एक शैली ठुमरी को घर घर तक पहुंचाया।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी की। 8 मई 1929 को बनारस में जन्मी विदुषी गिरिजा देवी के पिता रामदेव राय एक जमींदार थे, साथ ही संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने ही गिरिजा देवी को संगीत की ओर प्रेरित किया।
1: विदुषी गिरिजा देवी ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पंडित सरयू पांडे और बाद में श्री चंद्र मिश्रा से ली। बचपन से ही उन्हें ठुमरी, दादरा, कजरी और होरी जैसे उपशास्त्रीय गायन में रुचि हो गई। आइए सुनते हैं गिरिजा जी से उनके बचपन के बारे में।
2: मैं 5 साल की थी तब मेरा संगीत शुरू मेरे पिताजी ने करवाई और मेरे पिताजी को संगीत का शौक था। वो संगीत वादन वगैरह में उनकी रुचि काफी थी। मेरी रुचि इतनी हो गई कि मुझे पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती थी और केवल बस खेल कूद थोड़ा मैं मुझे गुड़ियों से शौक था। तो वो इसलिए हुआ कि मुझे लोकगीत बहुत पसंद थे। तो लोकगीत में मेरी जितनी गांव की लोग आती थी, मेरी माँ काकी दादी ये लोग जो शादी वादी में गाती थी, तो इसलिए मैं हर वक्त गुड़ियों की शादी करवाती थी। उसमें जो उन लोग को बिठा दे गाना गाने के लिए मैं भी गाती थी। तो उससे मुझे शौक हुआ कि ये भी संस्कारिक गीत एक चीज होती है। और उसके बाद तो मैं अपने गुरु से 15 साल तक बराबर सीखी, 10 साल पंडित सरयू प्रसाद मिश्रा जी से, जिनको हम लोग दादाजी कहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी उनसे संगीत की शिक्षा लिए हुए थे। संगीत का शौक जो मुझे हुआ कि मैं शास्त्रीय संगीत और अपने बनारस की सब चीजें मैं सीखूं, इसलिए उसके ऊपर मैं पूरी तरह से अपनी मन प्राण दे करके उसके बीच में पड़ गई। 18 साल की जब मैं हुई तब मेरे दूसरे गुरुजी आए, तब मेरी शादी हो गई थी, तो स्वर्गीय पंडित श्री चंद मिश्रा जी से, और उनसे लगातार मैंने जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, उन्हें कैंसर हुआ था, तब तक भी हमें बताते चले जाते थे, गले से उनको हो गया था, मैं लिख के बताते थे। इतनी मुसीबत से मैं सीखती थी और उनकी सेवा भी करती थी कि हमारे गुरु किसी तरह से बच जाए। तो काफी मैंने उनके इलाज और दवा और डॉक्टर, क्योंकि जब वो गए हैं तब काफी मैं प्रोग्राम्स वगैरह कर रही थी, इसलिए जान पहचान होने के नाते उनकी मैं चाहती थी मेरे एक गुरु तो बच जाए।
0: 1946 में गिरिजा देवी का विवाह एक व्यवसायी परिवार में हुआ। उस समय समाज में महिलाओं का मंच पर गाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह नहीं करते हुए अपने गायन की शिक्षा को जारी रखा। शादी के बाद उन्होंने अपने गायन और परिवार दोनों को एक साथ कैसे संभाला, आइए सुनते हैं।
2: उसमें से समय ऐसे निकालती थी कि अपना नींद सोना बंद कर दिया, अपना घूमना बंद कर दिया, अपने कोई फैशन की चीज बंद कर दिया, अपना कोई सिनेमा ये कोई चीज सब चीज देखना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास समय उतना था कि सवेरे उठ करके नाश्ता बनवाना, ये करना, पति को या अपने को परिवार के अतिथि को स्वागत करना, मेरी एक बेटी स्कूल भेजना, फिर इसके बाद समझ लीजिए कि दोपहर के खाने वाने में करना। तो लेकिन हम 3:30 बजे रात को उठते थे और मैं 6:30 तक गा लेती थी, तो 3:30 में 4 बजे से शुरू करके 6:30 बजे गा लेती थी, उसके बाद सारे काम करती, फिर 11 बजे से जब कोई काम नहीं था 11 से 1 तक गा लेती थी, इस तरह से गए। फिर मेरे 8:30 बजे गुरुजी आते थे, सबको खाना खिला के 8:30 से लेके फिर 11 बजे तक रात को गा लेती थी।
1: 1949 में उन्होंने पहली बार आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुति दी। ये उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रोताओं, विदुषी गिरिजा देवी की रेडियो में गाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं।
2: इलाहाबाद रेडियो स्टेशन बना 48 में शायद, वो हमारे स्वर्गीय पंडित उमकाना जी ठाकुर साहब लोग गए थे उसमें, और 49 से मैं गई उसमें। तो उस जमाने में खुद SD साहब थे, उन्होंने लिया मेरा ये गाना सुना और 1 घंटे तक सुनते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, तो उस जमाने में ग्रेड वगैरह कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन इतना अच्छा ग्रेड दिया जो कि हमारे बड़े कलाकारों को मिलता, उसी उतने ही रुपया मुझे मिला। तो 49 से तो रेडियो में गया।
0: जो ठुमरी पहले केवल लोक संगीत का अंग माना जाता था, उसे उन्होंने कला के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया।
1: उनकी आवाज में मिठास, गहराई और एक खास बनारसी अंदाज था। लोग उन्हें प्यार से ठुमरी की रानी कहने लगे। उन्होंने देश विदेश में सैकड़ों कार्यक्रम किए और हर जगह भारत की सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाया। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उनकी एक ठुमरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम स्वर धरोहर में अब समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम विदुषी गिरजा देवी के बारे में और जानेंगे।

0: आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है।
1: गिरिजा देवी ने ठुमरी, कजरी, चैती, होरी और टप्पा जैसी गायन शैलियों को खूब गाया। उनका अंदाज बहुत भावुक और दिल छूने वाला होता था। लोग उनके गायन में गांव, गंगा और बनारस की खुशबू महसूस करते थे। उनकी गायकी में एक सादगी और मिठास थी जो सभी सुधी जनों को रास आती थी। आइए सुनते हैं उनके संगीत सम्मेलन के बारे में।
2: मार्च में मैं दिल्ली गई, जहाँ की ऐसा था कि 20-20 मिनट के 3 प्रोग्राम होने चाहिए। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू और जितने अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों के लिए एक प्रोग्राम होता था तालकटोरा गार्डन में। तो उसमें 20 मिनट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, 20 मिनट पलुस्कर जी और 20 मिनट मेरा था। और संयोग की बात थी कि देखिए, ये भी मेरे तकदीर की बहुत बड़ी बात थी। हम कभी बताते नहीं, लेकिन आज बता रहे, सारी दुनिया सुने, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन जी वहाँ बैठे थे, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर। फिर जब मैं 17-18 मिनट लगी करे थी बंद करने, तैसे ही वो आई दौड़ी दौड़ी, मिस निर्मला जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी डॉक्टर राधा कृष्णन जी करें, एक गाना और सुनेंगे। तो हमने कहा, जब इधर देखे तो उम्र छोटी, तो हमने कहा 23-24 साल की उम्र, हमने कहा क्या कह रही हैं आप दीदी, उनको भी हम दीदी बोलते थे
1: जी।
2: तो बोले एक गाना और जल्दी सुना दो। हम कहा नहीं, जल्दी नहीं सुनाएंगे, अगर उनका सुनने का मन हो तो हम जब तक गाएंगे, सब लोग बैठे थे सुना में, अब बीच में आप 5 मिनट गाते रहे या उठ जाएंगे तो मुझे बहुत अपमान लगेगा। मैं तब अब ये मेरी बात सुना गई सबको, बिल्कुल बेसुध होके बोले, क्योंकि घबराए थे ना। मैंने कहा थोड़ा बगल में होगा कि दीदी देख लीजिए, बीच में से कोई लोग उठेंगे तो मुझे बहुत खराब लगेगा, या तो पहले ही कह दीजिए 2 मिनट का गाना हम गा दें, नहीं तो हम गाएंगे तो सुन लीजिए। तो उसके बाद मैंने समझ लीजिए कि एक ठुमरी 40 मिनट की गाई।
0: विदुषी गिरिजा देवी को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1989 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए। लेकिन उनका असली सम्मान तो वो प्यार था जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में उनके लिए है।
1: गिरिजा देवी सिर्फ गायिका ही नहीं, एक बेहतरीन शिक्षक भी थी। उन्होंने ITC संगीत अकादमी और BHU वाराणसी में कई छात्रों को सिखाया। उनके सिखाए हुए शिष्य आज भी ठुमरी को जिंदा रखे हुए हैं।
0: विदुषी गिरिजा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। अपने अंतिम दिनों तक वो संगीत सिखाती रही, गाती रही। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनका निधन हो गया। श्रोताओ, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharoharair@gmail.com। जी हाँ, swardharoharair@gmail.com।
1: श्रोताओं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी।
0: तो अब हमें, यानी आशुतोष
1: और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार। आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। वाचल स्वर था आशुतोष और श्वेता का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और अभिषेक ने।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।

0: एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह पक्की की, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया, शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उत्साह के साथ तीसरे दिन भी जारी। और अहमदाबाद में आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां पर कई आज पदक देखने को हमें मिले। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज वियतनाम के दानांग में एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के ओजोदबे खालिमवेव को 12-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में कजाकिस्तान के रोआन बेकिमोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित बुरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आर्टिक बेव अलिम्बेक उलू को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में न्योग लिंडो से 7-5 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम वर्ग में नेहा संगवान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबी रिवॉक से 9-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। वहीं 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। आज कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण तो कई ने कांस्य और कईयों ने रजत पदक अपने नाम किया। अगर हम देखें इस प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां पर टॉप चार के टीम जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। जहां आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्लेऑफ की चार टीमें फाइनल हो गई। आरसीबी 18 अंक और बेहतर रन रेट, अगर हम आरसीबी की बात कर ले तो टॉप पर आरसीबी पहुंची है, जिनका नेट रन रेट 0.783 है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई किया, जिनका नेट रन रेट 0.695 है। वहीं तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, जिनका नेट रन रेट 0.524 है। उन्होंने 9 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बना ली है। और अगर हम आगे के मुकाबलों की भी बात कर ले, तो धर्मशाला में 26 मई को क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं न्यू चंडीगढ़ में 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स मुकाबला करेंगे। वहीं कल एक और मुकाबला खेला गया था, हालांकि पंजाब किंग्स प्रतियोगिता से अब बाहर हो चुकी है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आज अपना मुकाबला जीत लिया है। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन ने अगले साल के लिए कुछ उम्मीदें जगाई हैं। कल लखनऊ में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। सुनते हैं कल के मैच का हाल।
1: कल हुए मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लखनऊ ने 16 के स्कोर पर अर्शीन कुलकर्णी का विकेट गंवा दिया। निकोलस पूरन भी 2 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए आयुष बड़ौनी और जॉश इंग्लिश ने 49 रन की साझेदारी की। आयुष ने 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 43 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत और इंग्लिश ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। कप्तान ने 26 रन की सदी हुई पारी खेली। वहीं इंपैक्ट प्लेयर जॉश इंग्लिश ने 44 गेंद पर बेहतरीन 72 रन बनाए। अब्दुल समद ने भी 37 रन का अहम योगदान दिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। पंजाब की ओर से मार्को यानसन और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अजमतुल्ला उमर जई और शशांक सिंह ने एक एक विकेट हासिल किए। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 140 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। प्रभसिमरन 39 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं अय्यर 51 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी के बदौलत पंजाब ने 2 ओवर शेष रहते सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट अपने नाम किया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमने खिलाड़ियों को अपना नेचुरल गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
2: Honestly speaking, we didn't say anything. We just kept it simple. Rather than having meetings, putting more pressure on the boys, I think you kind of get lost in the previous losses when you discuss a lot. It's important that you let them be. You know, their free flow of mind is required, especially in crucial games, and you don't want to make them overthink in pressure situation. And today, I literally told Ricky that, you know, let's not do any team meeting. Let's just head to the ground and do our rituals, which we've been doing consistently, and we could see the result.
1: करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: इस बीच कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 125 रन बना लिए। हालांकि इस मुकाबले का अब परिणाम से कोई भी प्लेऑफ में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए ये खिलाड़ी और ये जो टीमें हैं उम्मीदें जगाएंगी। अब सीधे रुख करते हैं स्क्वाश की ओर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया। शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में अब तक भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज लड़कों के अंडर 19 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। फाइनल में आर्यवीर ने कोरिया के ली जोंग हा युक को हराया। 3x4 सीड हासिल करने वाले आर्यवीर ने चीन के पंजुआ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मलेशिया के टॉप सीड निकलेश्वर मोगाना सुंदरम को 4 गेम में हराया। आर्यवीर ने पिछले साल अंडर 17 खिताब के लिए भी इसी मलेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में अनिका दुबे उप विजेता रही। अनिका दुबे को हार्लिन तान ने हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं लड़कों के इसी वर्ग में शिवेन अग्रवाल शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रहे। फाइनल मुकाबले में शिवेन को नुमान खान से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 13 वर्ग में लड़कों में अमारिया बजाज को भी फाइनल मुकाबले में हार मिली। खिताबी मुकाबले में उन्हें लियोंग सांग से हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये जो आर्यवीर दीवान और जो नई पौध है ये लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का झंडा शान से लहरा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं झारखंड के रांची की ओर, जहां पर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज भी कई स्पर्धाएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता के दूसरे दिन गुरिंदर सिंह वीर ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैच के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए।
4: लास्ट मिनट पे जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया और इसलिए मैं अच्छा भाग पाया और होपफुली आगे भी अच्छा करूंगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा। एंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड एंड्योरेंस की कमी थी, हर चीज पे फोकस किया, ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया। प्लानिंग यही है अभी, गो विद द फ्लो, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा, होपफुली भगवान ने चाहे तो कॉमनवेल्थ एशियन गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा।
0: और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी रांची संवाददाता महवेश
5: जी।
0: महवेश, झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता जारी है। आज महिलाओं के वर्ग में हरियाणा और पंजाब का दबदबा रहा, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
5: जी बिल्कुल, आज भी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल

0: पर कब्जा जमाया है।
1: जी, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ खेलों के लिए चयन ट्रायल भी है पुरुष हाई जंप से, देश के लिए क्या अच्छी खबरें नजर आ रही हैं इस प्रतियोगिता से?
0: जी, आज तो हाई जंप में भारतीय एथलीटों ने कमाल कर दिया। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी है।
1: मैं विश ट्रैक इवेंट की अगर हम बात कर ले तो आज हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रही थी?
0: आज ट्रैक पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। रिलायंस के तेजस अशोक सिरसे ने मात्र 13.5 सेकंड का समय निकालकर एक नया मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक जीता। उनके ठीक पीछे क्रिस्क एम ने 13.52 सेकंड के बेहतरीन समय के साथ रजत पदक हासिल किया। इन दोनों धावकों के बीच की टक्कर आज के दिन का सबसे बड़ा रोमांच थी। एक बड़ा धमाका पुरुषों के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में नंदिनी के प्रदर्शन पर मुख्य फोकस रहा। इन दोनों एथलीटों ने अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है आज।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद महवेश, आपने ये विस्तृत हमें जानकारी हमारे साथ साझा की। अब सीधे बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। पेरिस में आज से फ्रेंच ओपन टेनिस का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। भारत की ओर से यूकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी भारतीय दल का नेतृत्व करते नजर आएंगे। महिला वर्ग में करमन कौर थांडी ने क्वालिफाइंग ड्रॉ में हिस्सा लिया था, लेकिन उनका सफर पहले दौर में ही समाप्त हो गया। यूकी भांबरी ATP डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 तक पहुंचने वाले वे सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों में से सबसे आगे हैं। वहीं श्रीराम बालाजी अपने अनुभव और मजबूत नेट गेम के कारण भारतीय डबल्स टीम के अहम स्तंभ माने जा रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में भारत की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो भले ही सीमित हो, लेकिन यूकी भांबरी की शानदार फॉर्म, श्रीराम बालाजी का अनुभव और जूनियर खिलाड़ियों का उत्साह भारतीय टेनिस प्रशंसकों को भविष्य के लिए नई उम्मीदें दे रहा है। आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। हैम्बर्ग में इग्नासियो बुसे ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैम्बर्ग ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने दुनिया के 26वें नंबर के अमरीकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। उधर SM कृष्णा मेमोरियल ओपन में आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी ने कल बेंगलुरु में SM कृष्णा मेमोरियल ओपन 2026 में डबल्स को अपने नाम कर लिया है। सीधे बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पर। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल इवेंट के 75वें संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, अभिनेता आयुष्मान खुराना और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग शामिल हुए। मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। अब सीधे ले चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर IPL का अंतिम लीग मुकाबला जारी है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्य

0: मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित, अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का

0: पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी

के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। अमेरिका के विदेश मंत्री

0: विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा पार्टी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सिप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण लू का प्रकोप जारी है और आज दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में आज अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आयानगर और रिज आज सबसे गर्म स्थान रहे, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड पर 43.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि पालम और सफदरजंग में 43.7 और 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजोदबेक खालियम्बोएव को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. National Security Advisor Ajit Doval today met U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi. In a social media post, Ministry of External Affairs said the discussions focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. So the West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners.

0: prisoners awaiting deportation and repatriation in line with the Ministry of Home Affairs, MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. The directive instructs authorities to act as per the MHA framework on deportation and repatriation procedures for Bangladeshi nationals and Rohingyas found residing illegally in India. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that decision was taken to provide adequate time for students for submitting requests. The board advised candidates to avail this extended timeline and submit their applications accordingly. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Tatte Hakalu River in Uttar Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. Police said around 14 people from Shirali village had entered the river for mussel collections when overnight rainfall increased the water flow. As a few members were carried away by the current, others attempted to rescue them, resulting in the tragedy. Chief Minister Siddaramaiah has announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of the kin of each deceased. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the drowning incident in the Uttar Kannada district of Karnataka. The Prime Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of the kin of each deceased. Severe heat wave conditions have disrupted normal life across large parts of central and northwest India, with temperatures soaring well above the seasonal averages. Several regions are experiencing intense dry winds and extreme daytime heat, forcing people to remain indoors during peak afternoon hours and reducing outdoor activity significantly. Health officials have advised people to stay hydrated, avoid direct sunlight between noon and late afternoon, and take special care of children, the elderly and those with existing medical conditions. The national capital, Delhi, continues to reel under intense heat wave, with temperatures hovering around 44 degrees Celsius across most part of the national capital region today. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. In the women's freestyle events, Mansi Lathera and Kajal Dhochak clinched gold medals, while Sweetie and Neha Sangwan bagged silver medals. Ahilya Shinde added to the tally with a bronze medal finish. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। सरकार ने इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा न करने की सलाह दी। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोगों की मौत और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा है कि श्री डोभाल और रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए और 2 लापता हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार अधिकतर कामगार जहरीले गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित हुए हैं। गैस विस्फोट के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने शांगशी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन में कीव पर रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ड्रोन और मिसाइलों के एक बड़े हमले के दौरान अपने शक्तिशाली हाइपरसोनिक ओरिजनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: 4 साल से जारी इस युद्ध में तीसरी बार इस हथियार का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि इस जबरदस्त हवाई हमले में राजधानी की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। श्री जेलेंस्की ने कहा कि ओरोशनिक मिसाइल ने कीव क्षेत्र के बिला तेस्करवा शहर पर हमला किया। ये मिसाइल परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अन्य मिसाइलों के साथ ओरोशनिक मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि की। मंत्रालय ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना यूक्रेन के सैन्य कमान और नियंत्रण केंद्र, हवाई हवाई अड्डे और सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह हमला रूस की धरती पर मौजूद नागरिक ठिकानों पर यूक्रेन

0: द्वारा हाल में किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जिसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में खसरे के लक्षण वाली बीमारी से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस वर्ष ऐसे मामलों में मृतकों की संख्या 528 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार इस दौरान 1300 से अधिक नए संदिग्ध मामले दर्ज हुए। इस वर्ष मार्च से अब तक देश में खसरे के 8600 से अधिक पुष्ट मामले सामने आए हैं, जबकि देशभर में संदिग्ध संक्रमित लोगों की संख्या 63000 से अधिक हो गई है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजूद बेग को हराया। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल और रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने शुरू हो रहा है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। सरकार ने इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा न करने की सलाह दी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. US Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. In Pakistan, 24 people killed in a blast near railway track in Quetta. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. Now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, Both India and the United States have a strong interest in

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका लेकर कार्यक्रम हर सिंगार। जी हां, जहां हम बात करते हैं प्यार की, प्रेम की, मोहब्बत की। और मैं बताऊं, ये ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें ही ना बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को फारूख यार की शायरी से। तो वो कहते हैं, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अब देखने के लिए है भी तो कितना कुछ ना, कहीं जुल्फे उड़ रही हैं, कहीं आंखें प्यारी हैं, कहीं वो मीठे मीठे बोल। तो क्यों ना इसी विषय पर एक गाना सुन लिया जाए, मोहम्मद रफी और आशा ताई की आवाज में, और फिल्म है नया दौर। उम्मीद है आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा गाना सुनाने जा रही हूँ।

यकीन आ जाएगा, पलकों तले भी दिल धड़कता है। होठों से बहुत कुछ कहा जा सकता है, प्यार भरी बातें, है ना? तो क्यों ना एक गाना भी सुन लिया जाए होठों पर, जिसे गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission. Information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर,
6: यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर सिंगार अपनी रेडियो सखी रेणुका के साथ और हम बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत इश्क प्रेम की। मोहसिन नकवी कहते हैं, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो। अरे भाई, कभी कभी आपको कारण की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी कोई इंसान वैसे भी अच्छा लगता है ना। और अच्छे लगने वाले इंसान के लिए कभी कभी गाना भी सुना देना चाहिए। तो हम सुन लेते हैं किशोर दा की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरे नाम चांद पर। हाँ जी, चांद को जब हम देखते हैं तो महबूब की याद तो अपने आप आ ही जाती है। अब चांद के ऊपर गाना भी सुन लेते हैं, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और आशा ताई ने।

0: रात आती है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आ

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
0: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ और हम बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत प्रेम इश्क। जी हाँ, लव्स अनेक पर हमारा एहसास एक। सालिम सलीम कहते हैं, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं हमारे आखिरी गीत पर और ये गीत गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म है आंटी नंबर 1।

आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूं और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार

0: कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate.

0: that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
3: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहां की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहां आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोग

0: लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों।
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराती ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराती क्या है सर?
3: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक पूरा जो है अंडा देके बच्चे पैदा करके और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो व्हाइट कलर की ड्रेस होती है और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं तो पूरा गुलाबी और व्हाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
2: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते?
3: नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है,

0: प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रसिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं तो पूरे कंट्री से पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं। और गुजरात के अन्य भागों में भी ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस माइग्रेटरी बर्ड्स। डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं खास करके फ्लेमिंगोस?
0: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहां पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
1: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो उनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
0: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं। और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
1: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
0: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है। तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
1: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए एंड जैसा साहब ने बताया भी, तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं। बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था।

0: के माराओ ने
1: जी, फिर माराओ खेंगा 3 इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जब मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
0: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
1: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
0: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है।
1: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजित 3 से 4 लाख हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहां पर आते हैं।
0: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है।
1: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेकर 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे, एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहां पर शैलो वाटर तो है, शैलो वाटर की वजह से क्या होता है एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती है फ्लेमिंगोज की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो अब देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो है साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
0: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाब की संख्या, तो ये सुरखाब की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है।
2: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और

0: में बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाब के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
0: जैसे रहे ना रहे हम है का करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुर्खाब फ्लेमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस का पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकली रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ाबेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या है आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है, तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाएं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
0: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगोस के अंडा कम होते जा रहे थे,
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप ब्रह्म से डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
0: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा साइट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को ये भी बताए कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहां पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है, और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है
2: जी।
0: और इसे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
2: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,

श्रोता मित्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराती और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका

0: जिक्र किया था, उल्लेख किया था, तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल चार पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है, और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराड की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
2: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हमारा घोराड है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड हैं ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया, और यहां पर जो मादा घोराड है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
2: जी, ये

0: बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है, इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट सीजेडए की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
1: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए, तो ये कैसे फिजिबल होता है?
0: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराण है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है, जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
1: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में बताए थे कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है, अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें, और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे, पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास हैं वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े जिससे इसकी

0: संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जम्प स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन सी है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूस पैच जो घास के हुए वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाएं, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड है जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए, जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में है, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं, वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारीडंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉ जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष शर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने और दुनिया को अधिक विकल्प प्रदान करने में दोनों देशों का साझा हित है।

0: रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Falta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1,09,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. Prime Minister Narendra Modi congratulated Debangshu Panda for winning the Falta Assembly re-poll with a record margin. In a social media post, the Prime Minister said that the victory indicates the unwavering faith of the people of West Bengal towards the BJP. Union Home Minister Amit Shah said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janajati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, has postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11:47। शुरू हो चुका है निशिगंधा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज के साथ।

वैसे ये तो सच है कि जिस वक्त का हम इंतजार करते हैं ये वही वक्त है। ऋषिगंधा में ये वक्त होता है दो ऐसे दिलों के मिलने का जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक सा करते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अगर साजन उस पार है तो फिर इंतजार किस बात का, हम बातों की ट्रेन लेकर पहुंच जाते हैं उसी पार। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। कुछ भी कहो, ये गाने हमारे मूड को थोड़ा सा फिल्मी तो बना देते हैं। जब मूड फिल्मी हो गया है तो क्यों ना फिर एक और इसी मूड का गीत सुन लिया जाए। अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज में।

बिना पंख हम उड़ जाते हैं उन गलियों में जहां सुकून मिलता है और साथ साथ मिलती है खुशी। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी हर कविता फीकी पड़ जाएगी। सौदशमलविक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:44 और 13 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

अच्छा एक बात बताइए, जब कोई अपना जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं अचानक हमारे सामने आ जाए तो दिल में ऐसी ही बहार आ जाती है ना। और हमारी इस म्यूजिक प्लेलिस्ट में भी बहार का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगला गीत लता जी की आवाज में, अभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त वह 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा जी की आवाज के साथ।

मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी जो आपने गीत सुना वो आवाज़ थी आशा जी की और संगीत था उपेन अय्यर का और गीतकार थे कमर जलालाबादी। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अशोक कुमार और मधुबाला ने। अशोक कुमार ने एक ऐसे भाई का रोल इस फिल्म में निभाया था जो अपने भाई के हथियारों की तलाश में कलकत्ता आता है, और मधुबाला ने एडना नाम की एक कैबरे डांसर का यादगार किरदार इस फिल्म में निभाया था। और अगर इनकी एक्टिंग की बात की जाए अशोक कुमार और मधुबाला की, तो इन दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। और अब हम सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे साल 1964 में आई फिल्म लीडर का ये बेहद खास गाना, जिसे नौशाद साहब के लाजवाब संगीत और शकील बदायूनी के शब्दों ने सजाया था। अगर बात करें इस फिल्म की तो ये अपने दौर की एक बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी। खास बात यह है कि इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले दिलीप साहब ने लिखा था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, वैजंती माला और जयंत ने। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म आर पार से आप सभी के लिए।

0: फिल्म आर पार से सुना आपने ये सदाबहार गीत। आवाज थी शमशाद बेगम की, संगीत था ओपी नैयर का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1954 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त साहब और शकीला ने। अगला गीत हम सुनते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।
1: ये रातें, ये मौसम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की

एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश पे, एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में। एक प्रेमी तो ठहरा बनकर सबके हिस्से आना ही चाहिए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं लता जी के साथ, लता जी की आवाज के साथ।

तुम लौट कर आओ या ना आओ, चाहो या ना चाहो, जो तुम्हारा इंतजार करता है तुम्हें आधा पा लेता है।

प्रेम में पड़ी लड़कियां अपनी पीड़ाएं छिपाकर पूछती हैं प्रेमियों के आंसू। प्रेम में पड़ी लड़कियां अपनी पीड़ाएं छिपाकर पूछती हैं प्रेमियों के आंसू। प्रेम में पड़े लड़के अपनी छिपाई पीड़ाएं बांटने लगते हैं प्रेमिकाओं से। प्रेम महान नहीं है, केवल पीड़ाओं का प्रवाह है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते। रिश्ते तोड़े, मल्लाहों से नाव जला दी, अब हम दोनों दरिया पार नहीं कर सकते। ये भी एक तरकीब है दुश्मन से लड़ने की, गले लगा लो जिस पर वार नहीं कर सकते। खुदा को खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते।

7.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:45 और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में।

जब भी अंजामे मोहब्बत ने पुकारा खुद को, जब भी अंजामे मोहब्बत ने पुकारा खुद को, वक्त ने पेश किया हमको मिसालों की तरह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सके। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया था कि ये देश उनका है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 3:11 और 17 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। इस समय का सफर जिसमें रात्रि काल से भोर काल तक का सफर हम सभी तय करते हैं और कई बार यूं मतवाली हो उठती हैं ये आंखें कि जैसे यादों का समा बंध गया हो और फिर उन्हीं दिसी भी हो जाती है। नींद न आने के कई कारण भी बसते हैं, जी हाँ, या ऐसा भी होता है कई बार नींद से एकदम से अचानक जागते हैं और वापस नींद नहीं आती, यानी काल एक लेकिन एहसासात अलग अलग। हाँ, ये बात जरूर कि ये वक्त अपना, सिर्फ अपना, इस समय का।

0: मुकेश और गीता दत्त के स्वरों से सजा ये गीत चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया था साथियों। मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम हम मतवाले नौजवान, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मित्रों, हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं और इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी। और जब हमराही अच्छी हो तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे, मिनट या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और जब इंतजार के लम्हात खत्म हो जाते हैं और कहिए कि इंतजार की यात्रा समाप्त हो जाती है और मनभावन साथी मिलता है तो इस तरह के गीत हम गाते हैं।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत कालीघट्टा फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1951 में। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, जब सपने सच हो जाएं तो खुशी की चमक चेहरे पर सज ही जाती है, लबों पर गुनगुना उठती हैं तराने। और वैसे भी जब हम एक बार किसी को देखते हैं और वो दिल में बस जाता है और आंखों में भी तो बस जाता है। जी हाँ, उसी तरह की बात कहता ये तराना।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की स्वरों से सजा ये गीत था। रवि का संगीत था शकील बदायूं की लिखी रचना। फिल्म का नाम घराना, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे के स्वरों से सजाए ये गीत अभी आपने सुना दत्ता वाटकर का। दत्ताराम वाटकर का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जब से तुम्हें देखा है। और आइए अब इस अगले गीत में सुनते हैं क्या कहा जा रहा है।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की स्वर से सजा ये गीत गृहस्थी फिल्म से। साथियों अभी आपने सुना 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रवि का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़ उसी सजा ये गीत परछाइयां फिल्म से हमने लिया था। 1972 रिलीज ये फिल्म। आर डी बर्मन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं युगल नगमे। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ।

मिली तो करार बिल्कुल आना स्वाभाविक ही है। गीत में भी इसी तरह की सुंदर बात का खूबसूरती से बयां की गई है ये बात। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत, हुसैन लाल भगतराम का संगीत और कैफ इरफानी की लिखी रचना। फिल्म का नाम जलता रंग, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1949 में। साथियों, जहां प्यार होता है वहां डर का होना भी स्वाभाविक होता है कि भाई कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए या कोई और बात जिसे दूरी बन जाए हमारे रिश्तों में, कहीं हमारे जीवन सपने टूट ना जाए। और ये भी डर भाई कि इस रात का जो चांद है वो जल्द ना चला जाए।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम लव मैरिज, जो 1959 में रिलीज हुई थी। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत रचना में।

सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर के स्वरों से सजा ये गीत। तस्वीर फिल्म से अभी आपने सुना 1967 रिलीज फिल्म, चितलका रामचंद्र का संगीत, डीएन मधोक की लिखी रचना। और अब इनके दिल की बात भी जान लेते हैं जरा।

सुमन कल्याणपुर मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजाई ये गीत चांद और सूरज फिल्म से 1965 रिलीज फिल्म सलिल चौधरी का संगीत और शैलेंद्र के लिखी रचना। साथियों ये थी आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। बता देते हैं वो फिल्मों के नाम जिनके गीत आपने हमराही कार्यक्रम में सुने। फिल्म हम्मत वाले नौजवान, काली घटा, घराना, जब से तुम्हें देखा है, गृहस्थी, परछाइयां, जल तरंग, लव मैरिज, तस्वीर और चांद और सूरज। इन फिल्मों के गीत आपने हमराही कार्यक्रम में सुने। और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए जिनमें 7 महिलाएं शामिल थीं। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से भी दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 7 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, जब सुबह की शुरुआत करते हैं तो कुछ न कुछ प्रार्थना हम जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए, और धरती को नमन करना चाहिए, अपने ईश को याद करना चाहिए, अपने माता पिता गुरुजनों को याद करके दिन की यानी सुबह की शुभ शुरुआत करना चाहिए। तभी सारे दिन ही नहीं, सारे जीवन में खुशियां ही खुशियां खिलती रहेंगी।

खुशी और ऊर्जा से भरपूर ये गीत अभी आपने सुना, तीन सुंदर आवाजों का सम्मिश्रण लिए ये रचना लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें थी। साथियों, रवि का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना और फिल्म का नाम गृहस्थी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। और अब अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा, उसका आरंभ बस होने ही लगा है। उसकी आभा विद्यमान है और हरी हरी घास है जहां कुछ चमक रहा है। क्या है, किसका है वो, किनको मिला?

0: लता मंगेशकर की आवाज से सजाई ये गीत परख फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मित्रों, सुबह जब हम सोकर उठें और ये तुरंत भाई याद आ जाए कि हमारे प्रिय आ रहे हैं या उनसे मुलाकात होगी, तो इस अरुणिमा का महत्व और खुशी दोनों ही बढ़ जाते हैं। क्यों है ना।

0: सखी रॉबिन, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1962 रिलीजी फिल्म, सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे के स्वर थे, रॉबिन बनर्जी का संगीत था और योगेश की लिखी रचना थी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। और अब देखिए ना, अरुणिमा काल आ चुका है, लेकिन कोई कह रहा है कि रात तो भाई ढलती ही नहीं है, क्योंकि इंतजार जो पूरा नहीं हुआ, इंतजार तो रहेगा ही जब तक कि वो आ नहीं जाते।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजा ये गीत गुमराह फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1963 रिलीज ये फिल्म रही थी। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत कोहिनूर फिल्म से था। साथियों 1960 रिलीज ये फिल्म नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं ने की लिखी रचना थी।

राही हूँ नया अंदाज, डगर पर आया है बड़ा जीवन का सफर। निकला हूँ मैं अपनी मस्ती में, मालूम नहीं मंजिल है किधर। ये बढ़ते हुए बेचैन कदम आएगी, लगता है ठिकाना आने वाला है। कर लेना किसी से प्यार कहीं, दिल अपना दीवाना लगता है।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था और फारूक कैसर की लिखी रचना।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत गृहस्थी फिल्म से अभी आपने सुना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, रवि का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी। और अब इनकी सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये। सवेरा तो हो चुका है, जी हाँ, अरुणिमा और भोर सुहानी के बीच का वक्त चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं, सुनते हैं।

से 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों, जिस तरह जीवन के सफर में सुख और दुख की परछाइयां संग संग विद्यमान रहती हैं, हम परेशान भी होते हैं लेकिन उन कष्टों से उबरने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन कई बार संबंधों में भी रूठ मनाई हो जाती है। जी हां, रूठ जाता है, कोई वजह कोई भी हो। अब रूठने मनाने का जो सिलसिला होता है, यदि हम रूठे को मनाएंगे नहीं या हम रूठे ही रहेंगे स्वयं, तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। रिश्तों की जो डोर होती है साथियों, वो आपसी सामंजस्य, समझदारी, स्नेह, पारदर्शिता होती है। और अगर इस तरह की कोई बात हो जाती है तो भाई रूठने मनाने में क्या बुराई है।

लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों से सजा ये गीत आज का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना, फिल्म का नाम अमर दीप। इसी गीत रचना के साथ आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत

0: की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में भारत और अमेरिका के संबंधों का महत्व उजागर करती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की सतत भागीदारी और मजबूत करने की दिशा तय कर दी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को दोपहर के सबसे गर्म घंटों में घरों के अंदर ही रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है और बाहरी गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.

कार्यक्रम भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सुप्रभात साथियों, जीवन के साथ उरंग इन सभी रंगों से सजकर जब भोर सुहानी सुंदरता बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने बिखर गए हों, सज गए हों और बहुत ही सुंदर नजारे हमारे जहन में आते हैं। जरा उठकर तो देखें उन नजारों को, बहुत सुंदर नजारे होते हैं साथियों।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 5:11 और 21 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना आराधना फिल्म से। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। सचिन देव बर्मन का संगीत था और बोल लिखी थी आनंद बख्शी ने। और अब एक और नगमा सुनते हैं, प्यार की बात कहता साथ की बात कहता।

हेमलता और यसुदास की आवाजों से सजा ये गीत चितचोर फिल्म से अभी आपने सुना। 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। रविंद्र जैन का गीत संगीत था।

0: बहुत ही सुंदर स्नेह भावों से सजा ये गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, 1969 रिलीज फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी की लिखी रचना, फिल्म का नाम आराधना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।